2 बजे तो 2:30 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे। दिल आज शायर है, ढाई तो 3 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे उमंग दिल्ली केंद्र तो। ठीक 3 बजे तुसी सुनोगे FM रेनबो दिल्ली तो प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। शामी 4 बजे तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। पांच बजे तुसी सुनोगे द्रौपदी मुर्मू जी दी हजूरी विच आयोजित होने वाला डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी दा प्रसारण। तुहाडे चेहरे ते मुस्कान लैके आएगा प्रोग्राम लव यू जिंदगी ठीक शाम 6 बजे। सात तो 7:30 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे फिल्मी दुनिया। साढ़े 7 to 8 बजे तक तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 दियां हाईलाइट्स। राती 8 बजे 8:02 ते तुसी प्रोग्राम इंजॉय करोगे मसाला मिक्स। मैसेजेस बेस्ड फरमाइशी प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच तुसी अपने हिंदी ते पंजाबी सॉन्ग्स दियां फरमाइशां भेज सकते हो ठीक 9:02 ते। दिलां नूं ठंडक पहुंचाएगा शामी गजल प्रोग्राम 10 बजे तो 10:30 बजे तक। राती 10:30 तो 11 बजे तक तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। ते FM न्यूज़ हेडलाइंस तुसी सुनोगे आपो अपने टाइम ते। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

जो हेल्दी खावांगे वो पता नहीं कल जिहड़ा है ना आउंदा ही नहीं है, कल की वो अज भी नहीं आउंदा। ते अज मैं तुहाडे लई, चलो मैं ये मन के चल रही हाँ कि असी अपनी हेल्थ वल ध्यान देवांगे, उदां असी नहीं दिंदे, पर हाँ 1% मैं मन के चल रही हाँ। पुरानी कहावत है हेल्थ इज़ वेल्थ, पर सवाल ये है अपनी सेहत का खजाना भरन लई रोज़ की खाइए। तो चलो जी अज ड्राई फ्रूट जेड़े उन्हां बारे गल करदे हाँ। वैसे तो मेरे घर दे विच ना जदों मैं ड्राई फ्रूट जेड़े है खाण की गल करदी हाँ, पता की कहिंदे मम्मी कहिंदे आ बस कर जा, तू तो बदाम रख के ही भुल जाने, तू बदाम रखे किते सी, सो तेरी याददाश्त तो उदा ही कमज़ोर हो जानी है जब तेन याद ही नहीं रहा तू बदाम रखे किते है। सही गल है ना, तुहाडे नाल भी इदा हुंदा है कि नहीं हुंदा? तो चलो अपनी याददाश्त नूं तेज़ करन दे लई, मैमरी हेल्थ हार्ट जिहड़ी है हेल्दी हार्ट दे लई, तुसीं 4-5 जिहड़े बदाम है वह भिज के रख देने हैं, फिर अखरोट 2-3 ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होंदे ने, ते इह जिहड़ी है तुहाडे हेल्थ नूं बहुत फायदेमंद देगा। ते पिस्ता जिन्हों असीं पिस्ताशियो भी कहिंदे आ, हाँ अमीरा वाला है ना पिस्ताशियो, ते 5-10 पिस्ता एनर्जी प्रोटीन ते फाइबर देंदे ने, इसलिए वेट कंट्रोल विच तुहाडी मदद करेगी। ते उस तो बाद कैशियो जिन्हों असीं काजू कहिंदे आ, 4-5 जिहड़े आ काजू तुसीं रख सकते हो, इहदे नाल आयरन मैगनीशियम ते हेल्दी फैट का चंगा सोर्स है, पर ज़्यादा ना खाओ। इस तो बाद तुसी किशमिश जिहड़ी है ना 10-8 रात नू भिगो के रख दो, सवेरे खाओ, तो डाइजेशन खून की कमी तो एनर्जी लई बहुत चंगा रहेगा। फिर तुसी खजूर यानी डेट्स जिहड़ी है, उदा तुहानू डेट मिलती नहीं लेकिन हाँ तुसी खजूर जरूर खा सकते हो, 1-2 खजूर नैचुरल एनर्जी बूस्टर हुंदा है, ते तुहाडी बॉडी दे विच हाइड्रेशन जिहड़ी है बनी रहिंदी है। पंपकिन सनफ्लावर दे जिहड़े फ्लैक्सीड हुंदे ने उह वी तुसी खा सकते हो रोज़ाना, ज़्यादा नहीं खाने लेकिन इम्यूनिटी हार्ट ते हारमोनस लई बहुत चंगा रहिंदा है। सो याद रखियो ड्राई फ्रूट खाने तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, लिमिटेड। तो चलो जी अगला गीत सुनते हैं। आई होप ये गल्लां तुहाडे दिमाग विच गईयां होणगीयां क्योंकि मैं तो अपने दिमाग दे विच हुण बिठा लिया है कि थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट जिहड़े अपनी हेल्थ ते भी ध्यान देना है, क्योंकि इन्ना सारा जदों असीं काम करना है तो अपनी हेल्थ नूं भी तो अगे रखना है कि नहीं रखना है। तो चलो जी, या फिर यही सोचते रहना है कि अपने को पैसा चाहिए, यही गल्लां बस सोचनियां रहनियां।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो प्रोग्राम शुरू हो गया है जी, बहार वाला प्रोग्राम जी। प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई है जी गीत बहार। गीत बहार प्रोग्राम दे विच निवेदिता दा रहेगा साथ तुहाडे नाल। ते लो जी प्रोग्राम दी शुरुआत करन जा रहे हैं। मौसम भी बाहर सोना बना होया है, ते प्रोग्राम भी शुरू करन जा रहे हैं जी गीत बहार। सो बहारा वर्गा गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हूँ। बहुत ही सुरीली आवाज़ आतिफ असलम दी आवाज़ दे विच। एंजॉय करते हैं गीत दिल दियां गल्लां।

एंजॉय करो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है जी पंजाबी तड़का। वेल पंजाबी तड़का विच निवेदिता रहेगी आज थोड़े नाल। तो दोस्तों तुसे जानते हो कि पंजाबी तड़का प्रोग्राम है साडा फोन इन प्रोग्राम, मतलब तुसी सानू कॉल कर सकते हो, अपनी पसंद का गीत सुन सकते हो। जेकर कोई गलबात, कोई सलाह मशवरा, कुछ भी तुसी साडे नाल कोई किस्सा, कोई कहानी साझा करना चाहते हो या साडे जरिए लिसनर्स दे नाल गलबात करनी चाहते हो तो वह भी कर सकते। तो उहदे लई करना की है जी, नंबर डायल करना है, नंबर है 0181 2813074। यह नंबर डायल करके तुसी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो। सो प्रोग्राम दे विच सारे गीत चलणगे जी तुहाडी पसंद दे, पर पहला गीत होएगा मेरी पसंद दा। सो मैं प्ले कर रही हाँ अपनी पसंद दा गीत, ते उस तो बाद फिर फटाफट तुसी हो जाओ जी शुरू, नंबर मिला लो 2813074। तो लो जी मैं इंतजार कर रही हाँ तुहाडी कॉल दा, ते तद तक तुसी एंजॉय करो अमृत मान ते जैसमीन अख्तर दी आवाज़ दे विच जागो।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का ते पंजाबी तड़का दे विच साडे कोल लगातार कॉल्स पहुंच रही ने जी ते अगले कॉलर भी पहुंच चुके ने गल करदे आ ना ते नाल हेलो
1: सच्ची चुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती मैडम जी कभी कागज के फूलों से
0: क्या बात है पर कागज के फूलों ते ना सेंट स्प्रे कर लेना ओना विच भी आपा महक लिया देनी है क्या बात है सर क्या बात ज्यादा हो गया है
1: छोटे होंदे सी ना असि अगे अगे दौड़ना साडी माता ने पिछे पिछे दौड़ना
0: डंडा लैके दौड़ना
1: डंडा लै के बहुत मतलब जिंदगी दे दिन याद आंदे ना जदों मोया नाल आया रोटी खा ला नहीं भुख होनी ता भी कहना नहीं क्यों नहीं खानी हूं तो जो व्याह हो व्याह तो पता जानी एक बार पूछती खानी कहनी नहीं खानी ना कसम खा
0: अज तुम रोटी नहीं मिलनी जाके जिदा दी गल्लां करदे पे हो ना अज रोटी तुहाडी कैंसल है
1: नहीं मैडम बचपन जेड़ा ना बहुत मजेदार मारा प्यार मिलदा ही नहीं मैडम
0: जी बिल्कुल
1: कितने मां प्यो बाप अपने पिता दी जड़ी फटकार मां दा प्यार असी अगे दौड़ना उन्हें कहना कमीज ला के सुट देनी स्कूल नहीं जाना बस परे सुट देना मां ने संभालना सारा
0: जी बिल्कुल
1: आगे सवेरे सन तैयार मिलना सब कुछ
0: नखरे मां बाप ही सहन कर सकते होर कोई नहीं करदा
1: हाँ बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि मां प्यो की कदर जरूर करो जी बहुत खुश नसीब होते हैं जो मां बाप के करीब होते हैं
0: जी ते आज फिर
1: एक दिन तरीफ की थी मैं तीसरे नंबर
0: चलो अज फिर तुसी सानू दसो कोई बचपन दी याद दसो जा जदो आपा छुट्टियां च नानके जांदे हुंदे सी या कोई कदी खड़कंती होई होवे चंगी याद है कुछ
1: खड़कंती रोज़ी होती
0: सी रोज़ी हुंदी सी कोई स्पेशल मेमोरी नहीं
1: आलो खादा सी मैडम नांदा नहीं सी सर्दी है ना
0: ओहो नांदे नहीं सी
1: उस करके मैडम नानके आए ते नानके आके बहुत मजा आंदा सी उत्थे बहुत प्यार मिलदा सी
0: नानके चंगे लगदे आ ना रोक टोक नहीं हुंदी
1: रोक टोक नहीं हुंदी लेकिन मैडम मां प्यो दा कहना मनना चाहिदा
0: बिलकुल
1: अज असीं पढ़े हुंदे उहनां दा कहना मनिया हुंदा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਨੀ ਬੱਚੇ ਨੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ
0: ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ ਢਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਚਲੋ ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੋਗੇ
1: ਗੀਤ ਲਾ ਦੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਿਨੇ ਲੜਦਾ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है होम स्वीट होम। सो ताड़े कर नू ताड़ी सेहत नू बिल्कुल थानू सेहत याब करन दे ले असी पहुंच गए हैं जी। बहुत सारी जानकारियां लेके बहुत सारे टिप्स

मस्ताने ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा।

वो माथे पर सजाकर सुर्ख बिंदिया जब भी आती है, वो माथे पर सजाकर सुर्ख बिंदिया जब भी आती है, बिना बोले ही आंखों से सौ बातें सुनाती है। जी दोस्तों, उसी बहुत सारे गाने का जिक्र कर चुके हैं, पर बिंदिया का भी अहम स्थान है गीतों के विच। गल करिए 60, 70, 80 के गीतों की, तो बिंदिया का जिक्र अक्सर ही गीतों के विच हुंदा सी, क्योंकि शिंगार नू चार चन्न लगान दे विच बिंदी का अहम योगदान हुंदा है, अहम रोल हुंदा है। तो अगला गीत भी सुन रहे हैं बिंदिया ते, लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ के।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 FM रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलेडीज। तो मिड डे मेलेडीज दे विच अज असी गल कर रहे हैं उन्हां गीतां दी, जिक्र कर रहे हैं उन्हां गीतां दा जिहदे विच गहिणियां दा अक्सर जिक्र हुंदा सी। दोस्तों कदे कदे सोचीदा है कि पुराने दौर दे जो गीतकार सन, पुराने दौर दे लिखारी सन, उन्हां कोल जज्बातां नूं बयान करन लई किन्ने नाजुक तराजू हुंदे सन। अज दे दौर दी गल करिए तां प्यार दा इजहार करना होवे तां सिद्धा सिद्धा ही कह दिता जांदा। पर एक ओह वी जमाना सी जदों दिल दी गल कहण लई कलाइयां विच खणकदियां चूड़ियां दा सहारा लिया जांदा सी।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ न्यूज़ ऑन EIR दे ज़रिए दोस्त इस वेले FM रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए ने। दोस्तों हुणे तुसीं प्रोग्राम सुन रहे सी मिड डे मेलेडीज़ अपनी आरजे दोस्त निवेदिता दे नाल। FM रेनबो दी कड़ी दे मुताबक इस वेले दोपहर दे 2 बज चुके ने। हुण तो कुछ ही पलां दे विच तुसीं सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया।

0: गया, जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का।

0: बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियां तोड़ लाता है बस।
1: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियां ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
0: काम चल जाता है, काम चल जाता है, हाँ नहीं तो। अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
1: अच्छा,
0: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ
1: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
0: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
1: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे, ठीक?
1: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
0: क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
1: कुछ नहीं,
0: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
0: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ। अच्छा।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा।
0: चुप्पा
2: अम्मा। अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा,
1: सजा सजा बेटे सजा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ। है सोचा बेटा, सोचा सोचा, शाबाश। अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो

0: क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू फिर चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो, हाँ, आगे चलकर देखते हैं। चलो
2: ये देखो ये पेड़।
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: ध्यान से बेटा।
1: आई
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो।
1: अम्मा लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई

0: घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल,
2: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
2: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है। तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
2: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है? चलो ढूंढो ना।
1: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
2: क्या, सारे पेड़ों को बख्श दिया?
1: और क्या।
2: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
1: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
2: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
1: क्या हुआ?
2: हाँ रे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
1: तू समझ गई है?
0: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
1: बता?
2: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
2: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
2: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुलें आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
0: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल
1: सच्ची।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी

0: दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और फिलहाल समय हो गया है 2:59 और 3 बजने को हैं। इसी के साथ ये समय होता है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है और उनके बारे में आप जान सकते हैं सीधे एक्सपर्ट से। तो फिलहाल बनी रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद पूजा जी।
1: हमारे इस खास कार्यक्रम में अगर इस विषय से जुड़े आपके पास हैं कोई सवाल तो आप हमें करिए कॉल। इस लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। श्रोताओं, आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, आज हम आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एलर्जी है, और आज ये इतनी आम क्यों हो गई है, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है।
2: धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एलर्जी क्या चीज़ है ये हमें समझना है। जब भी कभी कोई भी चीज़ के संपर्क में हमारा शरीर आता है, चाहे वो कोई कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या बाहरी कोई कण है, तो ऐसे शरीर में ऐसे स्वरूप में हमारे शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस अक्सर हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे को बचाता है वो करता है। अगर ये इम्यून सिस्टम बाहरी चीज़ को पसंद नहीं करता, उसको समझ नहीं आता, तो वो उसके खिलाफ रिएक्शन करता है। अगर वो इन्फेक्शन है तो उसके खिलाफ इन्फेक्शन के रिएक्शन करता है। अगर वो साधारण कण है, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शरीर एलर्जी के कुछ लक्षण प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एलर्जी जो है वो साधारण चीज़ें, जिन चीज़ों को नॉर्मल व्यक्ति को रिएक्शन नहीं करना चाहिए, उसको भी इम्यून सिस्टम गलत समझ के उसके खिलाफ रिएक्शन करता है, अधिक प्रतिक्रिया करता है, और जिसकी वजह से एलर्जी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एलर्जी के कारण और प्रकार क्या है, और कोई कब और कैसे उसको पता चले कि वो एलर्जी का शिकार हो गया है।
2: जी जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एलर्जी जो है वो एक कई सारे लक्षणों के साथ में प्रेजेंट कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आँखों की एलर्जी के अंदर, जिसके अंदर आँख के अंदर खुजली होना, लालीपन होना, पानी आना, नाक की एलर्जी, जिसमें आपने अक्सर कहते सुना होगा लोगों को कि छींकें आती हैं, ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर आती हैं, उसके बाद में फिर नाक बहना, नाक बंद होना, कई बार कुछ लोग मुँह खोल के सोते हैं, खर्राटा लेते हैं, तो ये सभी चीज़ें एलर्जी की।

0: संभावनाएं हैं। इससे कई बार नींद भी प्रभावित होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, दिन के अंदर कई बार स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस के अंदर नींद जो है वो आती है। तो ये सभी एलर्जी के लक्षणों की वजह से उनके प्रभाव हैं। फिर
1: जी
0: सांस फूलना, जिसके अंदर काफ़ी लोग इनहेलर नेबुलाइजर की दवाइयाँ यूज़ करना, आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के समय पर पॉल्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और दिल्ली के अंदर तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि पॉल्यूशन, मतलब पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक पॉल्यूशन काउंट किया जाता है दिल्ली के अंदर।
1: जी
0: तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो एलर्जी के लक्षणों को बढ़ा देता है।
1: जी
0: इसी के अलावा खाने पीने की चीज़ें, बच्चों में कुछ अलग कारण होते हैं खाने पीने की चीज़ों के जो एलर्जी के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। कभी कभी पेट की समस्याएं, कभी कभी चमड़ी की समस्याएं, जैसे उभरे हुए छत के आ जाना और फफोले से, या कभी कभी एक्जिमा की तकलीफें हो जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये एलर्जी कर
1: के
0: सकती
1: अंदर
0: हैं।
1: आती है। डॉक्टर साहब, इस खास विषय पर हम आपसे विस्तार में जानकारी लेंगे, उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल है आवश्यक। और इस खास विषय पर आपके भी हैं अगर कोई सवाल, तो आप करिए ना हमें कॉल। उसके लिए हमारे नंबर है 011-234-21080 और 011-234-21082। व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070।

0: एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हमारा आज का विषय है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस खास विषय पर आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, कई लोग किसी खास तरह की सुगंध या किसी चीज़ के संपर्क में आने से ना छींकना शुरू कर देते हैं। क्या एलर्जी सिर्फ छींक आने या नाक बहने तक सीमित है, या ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?
1: सो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें एक्चुअली दो प्रश्न छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ ये नाक को प्रभावित करती है? तो हम कहते हैं कि एलर्जी की एक बीमारी जो है पूरे शरीर को, और सिर्फ पूरे शरीर को नहीं, ये पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कैसे? कि जो लक्षण है वो लक्षण जो है एलर्जी के किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। वो नाक में भी आ सकते हैं, आँखों में भी आ सकते हैं, कई बार कान में बार बार दर्द होना, कान बहना, वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को कई बार कहा जाता है कि टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, तो वो भी एलर्जी की वजह से हो सकता है। को नेबुलाइजर इनहेलर की जरूरत पड़ना, छाती से सीटी जैसी सी आवाजें आना, ये सब भी छाती की एलर्जी की वजह से हो सकता है। शरीर पे दाने चकते होना, खुजली होना, और कभी कभी एलर्जी जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको कहा कि आपके प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न जो है वो ये कि ये जो स्मेल है, ये स्मेल जो है इससे जैसे परफ्यूम हो गया या ये चीजें हो गई जो स्मेल की चीजें, स्ट्रॉन्ग स्मेल की चीजें हैं, अक्सर ये एलर्जी करती नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उन लोगों की समस्याओं को बढ़ा देती है। तो ये ट्रिगर्स हैं, बट ये खुद अपने आप में एलर्जी नहीं करती है।
0: तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को किसी तरह की स्मेल से एलर्जी है तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है?
1: बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब भी कभी कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही है, डेली बेसिस पे छींकें आ रही है, आपको बार बार दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, आपका काम प्रभावित हो रहा है, नींद प्रभावित हो रही है, आपको उसके लिए चिंता करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये सही समय है कि जिसके अंदर एक एलर्जी के एक्सपर्ट को आपको जरूर मिलना चाहिए और जरूर दिखाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ले लेते हैं इनको कॉल। हेलो।
2: हेलो
0: जी।
2: हाँ, पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। मेरे तीन सवाल हैं।
0: जी,
2: पहला सवाल, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी जी।
2: तो मेरी उम्र 48 वर्ष है और व्हाइट मेरी स्किन से टोनर्स होते ना, ऐसे मेरी स्किन है।
0: जी जी।
2: तो मेरा सवाल है कि मुझे ना श्वसन एलर्जी है। अब जो भी खुशबू या महक से मुतालिक चीजें हैं उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बदबू या स्मेल से मुतालिक चीजें हैं उससे मुझे मतलब एक दिमाग में भी वो प्रॉब्लम चल जाती है और पेट में भी, और सांस लेने में जो है वो दम सा घुटता है
0: जी।
2: और कुछ हद तक मुझे स्किन एलर्जी भी है, तो इसके लिए मैं घरेलू स्तर पर मैं क्या करूँ, या अगर आपके पास आते हैं तो वहाँ मतलब मेडिसिन से इलाज हो जाएगा कि मतलब खून खराब है तो फोड़ माथा की नौबत आएगी
0: जी।
2: पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल कि मेरी माता जी को वो चर्म स्किन से मुतालिक एलर्जी है, उनकी उम्र 73 वर्ष है, तो वो क्या करें घरेलू स्तर पर, और अगर आपके पास आया तो आप क्या करें। तीसरा, मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र 47 साल है और उनको जो है नाक से मुतालिक एलर्जी है।
0: तो
1: धन्यवाद आपके प्रश्न का। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके तीनों प्रश्न एक दूसरे के साथ संबंधित ही हैं, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि तीनों जो सदस्य घर के हैं जो ब्लड रिलेटेड हैं, तो ये ब्लड रिलेटेड तीनों सदस्यों को एलर्जी की समस्या है। और जो सांस की नली से संबंधित, तो सांस की नली हमारी नाक से शुरू होती है और फेफड़ों तक जाती है, तो जिसको हम रेस्पिरेटरी एलर्जी कहते हैं। और आपको अगर देखा जाए तो किसी एक सदस्य को नाक के लक्षण ज्यादा है, किसी दूसरे सदस्य को शायद सांस के लक्षण ज्यादा हैं, पर ये एक कॉमन एलर्जी ही है। अब ये हमें समझना है कि दो तरीके के कण जो है वो मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। एक तरीके का कण है जिसे वाकई में एलर्जी होती है, जैसे फूलों के पराग कण हुए, या जैसे मौसम बदलाव के साथ में अलग अलग तरीके के पराग कण आते हैं, कभी कभी कुछ तरीके के डस्ट माइट, कॉकरोच, पेट डेंडर्स, घर के अंदर पालतू जानवर, इनके जो डेंडर्स होते हैं, उन सभी चीजों से जो एलर्जी हो सकती है वो ट्रू एलर्जी है। लेकिन जिस व्यक्ति को एलर्जी की शिकायत है, ऐसी स्थिति में उनकी जो नाक की त्वचा है अंदर से, या सांस लेने की जो त्वचा है अंदर से, वो अधिक सेंसिटिव हो जाती है, अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में बाकी चीज़ों को भी रिएक्ट करती है, जैसे कोई स्मेल आ गई तो उसको भी रिएक्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में वाकई उसे एलर्जी नहीं।

0: होती है, पर क्योंकि त्वचा पहले से ही संवेदनशील है जिसकी वजह से वो रिएक्शन करती है और आपको लक्षण आते हैं।
1: जी
0: रही बात बचाव की, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक विशेषज्ञ से मिलके उनकी सलाह के साथ में ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके और उनको दूर करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसका बचाव किया जा सके। और कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जिन ट्रिगर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जिनको भी दिया जा सकता है और उसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही सांस की नली में और नाक के अंदर जो संवेदनशीलता है उसको थोड़ा कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे बार बार वो रिएक्शंस ना हो। ओवरऑल जो आपको चीज़ें तकलीफ करती हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती हैं, उसको बेहतर किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्मेल से होने वाले एलर्जी की, तो बहुत से लोग एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर कभी कभी नहीं कर पाते। आम व्यक्ति कैसे पहचान सकता है कि उसे एलर्जी है या सिर्फ वायरल संक्रमण?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखें तो जैसे आपने नाम लिया वायरल संक्रमण,
1: जी
0: वायरल संक्रमण जो है वो एक तरीके का इन्फेक्शन है।
1: जी
0: इन्फेक्शन की ज़्यादातर चीज़ें या वायरस जो है वो ज़्यादातर बुखार के साथ आपको मिलेगा। एक बार जब भी कभी आएगा तो बुखार आएगा, बुखार के साथ में 5 से 7 दिन की वो प्रतिक्रिया रहेगी जिसके अंदर शुरू के 3-4 दिन के लिए बुखार रहेगा, नाक बहेगी और अक्सर जो है वो छींकें मतलब लगातार आना, लगातार नाक से पानी बहना, और ये चीज़ें अचानक शुरू हो जाएंगी और उसके बाद वो दवाओं को 1 दिन 2 दिन के अंदर 3 दिन
1: जी
0: में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। एक और बड़ा अच्छा मिलेगा आपको वायरल के अंदर कि एक से अधिक लोगों को एक ही समय के आसपास में वायरल घर के अंदर मिलेगा। तो आप हमेशा पूछ सकते हैं घर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कुछ सर्दी जुकाम चल रहा है क्या, तो उसकी वजह से शायद ये वायरल ज़्यादा है।
1: जी
0: लेकिन अगर ये सिंपल एलर्जी है तो उसमें बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, शरीर में थकावट नहीं होगी, लेकिन सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग छींकें आएंगी, सर्द गर्म के समय के ऊपर भी छींकें वगैरह ज़्यादा परेशान
1: जी
0: करेंगी, नाक ब्लॉक करेगी, तो इसका मतलब हम एलर्जी की वजह से ज़्यादा परेशान हो
1: जी
0: रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पर, ले लेते हैं इनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार
2: मैं टीना बात कर रही हूँ दिल्ली से।
1: जी
2: मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर सर से। डॉक्टर सर को नमस्कार पहले, और एंकर मैम को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी पूछिए सवाल।
2: सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जैसे ना सर, मुझे ना बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से एलर्जी है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे जरा सी हवा चलती है और मिट्टी उड़ने लग जाए तो मुझे एकदम से सांस घुटने लग जाता है और एकदम से बेचैनी होना शुरू हो जाती है। या जैसे मैं बाहर कहीं ट्रैवल करती हूँ तो भी अगर जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है या ज्यादा क्या नाम है धूप धूप की वजह से भी मुझे कई बार एलर्जी, मतलब सांस घुटने की जो है वो प्रॉब्लम है। तो और जैसे घर में हम धूप अगरबत्ती ये सब भी नहीं जला सकते, तो ये मतलब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने अस्थमा का वो किया क्या नाम है जांच की, वो नॉर्मल निकला है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी एकदम ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर जहाँ पे मेरा कोई फैमिली का पर्सन मेरे साथ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ? कोई क्या ऐसी मेडिसिन है जिसे खा के थोड़ी राहत मिल सकती है? और इससे
1: लगता है
0: तो
1: इनका
0: आपका
1: कॉल।
0: प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न
1: जी
0: है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो आपको जो समस्या है उसके अंदर दमे की समस्या अधिक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन शुरुआत नाक से होती है, नज़ले जुकाम से होती है। तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति में कुछ तरीके के इलाज हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले हाँ, ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दमे की शिकायत हो लेकिन उनका टेस्ट नॉर्मल आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अलग भांति के अलग तरीके के टेस्ट, जैसे आजकल हमारे पास में कुछ अति संवेदनशील टेस्ट जिसको ऑसिलोमेट्री बोलते हैं, जो बहुत जरा सी चीज़ को भी पकड़ पाते हैं और उसके बाद में उसको बता पाते हैं कि क्या सांस की नली में थोड़ी बहुत भी सूजन है कि नहीं है। तो वो करके, और अगर हमें पता चल पाए कि थोड़ी सूजन भी है, तो आपको कुछ दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जिन दवाइयों के माध्यम से हम आपकी जो सांस की नली और नाक की जो संवेदनशीलता है उसको कम
1: जी
0: कर पाते हैं।
1: जी
0: फिर उसके बाद आपका प्रश्न है कि कभी अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी कोई तकलीफ आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो उसके लिए कुछ रेस्क्यू मेडिसिन दी जाती हैं। अक्सर ये मेडिसिन जो होती हैं ये आपको नाक के माध्यम से या सांस के माध्यम से लेने की होती हैं, ये खाने पीने की नहीं होती हैं। रेस्क्यू मेडिसिन जो हैं, जिस समय के ऊपर अधिक तकलीफ है तब कोशिश की जाती है कि खाने पीने की दवा के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, या तो इनहेलर या नेबुलाइजर की दवाइयाँ या नाक का स्प्रे, और या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स कुछ इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, पर खाने पीने की टेबलेट सिरप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते।
1: नहीं डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो हेलो,
3: नमस्कार जी।
1: नमस्कार
3: सर को भी नमस्कार जी।
0: नमस्ते भैया।
3: मैं यामिन भाई रेडियो वाला चिरूडी लॉन जी लगा
1: जी।
3: जी मैं सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि मौसम बदलता है
1: जी
3: तो उसमें लोगों को दिक्कत होती है, सर्दी से गर्मी में जाएंगे, गर्मी से
1: जी
3: बरसात में आएंगे तो दिक्कत होती है, तो ये भी एक एलर्जी होती है, और क्या ये माँ बाप से बच्चों में भी जाती है? जानना
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जेनेटिक होती है, आनुवंशिक होती है, और ये

0: बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेरेंट्स में, माँ बाप के अंदर, या इवन माँ बाप में भी नहीं, कभी दादा दादी या नाना नानी के अंदर भी अगर एलर्जी के किसी तरीके के लक्षण रहे हैं, तो बच्चों में या पोते पोती नाती पोतों के अंदर भी काफ़ी हद तक उनमें एलर्जी होने के लक्षण हो सकते हैं। और जैसे आपने बताया, मौसम के बदलाव के साथ लक्षण होते हैं, जिसको हम सीजनल एलर्जी बोलते हैं। ये ज़्यादातर परागकणों की वजह से, क्योंकि अलग अलग मौसम के अंदर अलग अलग पेड़ पौधे जो हैं वो खिलते हैं, उन पर फूल आते हैं, उनके परागकण आते हैं, और ये परागकण जब संपर्क आते हैं स्पेशली संवेदनशील त्वचा के साथ, संवेदनशील नाक या सांस के साथ, सांस की नली के साथ, तब उस समय पर वो लक्षण करते हैं। तो यस, इसके लिए जानकार टेस्टिंग करानी बहुत जरूरी है, और उसके बाद में फिर उसका यथासंभव उपाय जरूरी है।
1: जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को गले में खराश होती है, तो क्या ये भी किसी तरह की एलर्जी का सिम्टम है?
0: जो गले में खराश है वो ज़्यादातर किसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, लेकिन उसके अलग कारण भी हो सकते हैं। जो कॉमन कारण है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे किसी को नज़ला जुकाम है तो नाक आगे बहती है, लेकिन कई बार नाक बंद होती है, बहती नहीं है, लेकिन वो नाक पीछे गिरती है गले के अंदर। गले के अंदर गिरने की वजह से वो गले के अंदर एक तरीके की सूजन कर देती है, जिसको हम हमारी मेडिकल भाषा में कोबल स्टोनिंग बोलते हैं। ये जो सूजन है, इसकी वजह से गले की जो पिछली सतह है, जो त्वचा है, वो लाल हो जाती है और वहाँ पे खुजली होने लगती है। कभी कभी तालू में भी खुजली होने लगती है, आपने महसूस किया होगा, और ये सभी चीजें एलर्जी के लक्षण हैं। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि लोग उसकी वजह से मुंह खोल के सांस लेते हैं, जो हवा जो है, जो पॉल्यूटेड एयर है, जो इन्फेक्टेड एयर है, वो उस कोबल स्टोन अपीयरेंस के साथ जाके चिपक जाती है और फिर वहां पर इन्फेक्शन करती है, तो गला खराब होना, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ना, फीवर आना, वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी अलग कारण, जैसे किसी को एसिडिटी काफी कॉमन चीज है, और रिफ्लक्स की वजह से जो ये तेजाब है पेट से, ये रिफ्लक्स होकर गले के अंदर जाता है और वहां पे भी ये खराश का कारण बन सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं इनका कॉल भी। हेलो
2: हेलो
1: जी
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: हाँ जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते जी,
2: मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि अगर पीएफटी नॉर्मल किसी का आ जाए तो उसको एस्थमा हो सकता है।
0: जी,
2: अगर किसी को पीएफटी नॉर्मल आ जाए उसको फिर भी सिम्टम हो तो उसको कौन सी जांच करानी चाहिए?
0: बिल्कुल, तो उसके लिए जो जांच है उसका नाम है ऑसिलोमेट्री। ऑसिलोमेट्री के नाम से ये टेस्ट होता है, जो पीएफटी के मुकाबले अधिक सेंसिटिव, अधिक संवेदनशील होता है, कुछ कुछ जगहों पर पाया जाता है, लेकिन हाँ, ये बारीक से बारीक सूजन को भी सांस की नली में पकड़ पाता है। जो स्पायरोमेट्री का जो टेस्ट है, जो पीएफटी का टेस्ट है, वो कभी कभी बारीक सूजन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन जो ऑसिलोमेट्री का टेस्ट है वो उसको बारीक सूजन को भी पकड़ सकता है।
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ सबसे अधिक एलर्जी किन वजहों से होती है? क्या धूल प्रदूषण, परागकण और कुछ खाद्य पदार्थ इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं?
0: जी, तो हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर मोटे तौर पे माने तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो किसी खाने पीने की वजह से होती है, एक है जो सांस लेने की वजह से होती है। अगर खाने पीने के अंदर बात करें तो सबसे अधिक जो मुख्य कारण है वो, जैसे छोटे बच्चों के अंदर स्पेशली दूध के बाद में जो अगला कारण है वो अंडा, फिर मूंगफली, कभी कभी किसी कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी भी होती है, और फिर उसके बाद में जो लोग नॉन वेजिटेरियन चीज़ें खाते हैं, सी फूड खाते हैं, तो उनसे भी कभी कभी एलर्जी हो सकती है। तो ये कॉमन कारण है खाने पीने की एलर्जी के। लेकिन हमने देखा कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए तरीके के कारण जो शायद विदेशों में नहीं मिलते, जैसे ब्रिंजल, बैंगन की एलर्जी होना, भिंडी की एलर्जी होना, तो ये भी हमारे पास कुछ केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं।
1: सर, किसी प्रमुख सब्जी, और जैसे आपने सी फूड के बारे में कहा, तो इससे एलर्जी होने का कारण क्या होता
0: है? देखिए, एलर्जी जो है वो किसी भी फूड के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है उससे होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम किसी को भी पसंद और नापसंद कर सकता है। तो जो ये पसंद और नापसंद करना है, ये हर एक के इम्यून सिस्टम का अपना खुद का रोल है, जिसको कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ज़्यादातर जेनेटिक कंडीशंस में, जो अनुवांशिक कंडीशन है उसके अंदर ये पोटेंशिएट हो जाता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या पसंद करना है और क्या नहीं पसंद करना है। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि एलर्जी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं, जो लोग साफ स्वच्छ वातावरण में ज़्यादा रहते हैं, साबुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कहीं अधिक पाई जाएगी। जबकि उसी के मुकाबले अगर आप देखेंगे गांव के माहौल के अंदर, जहाँ पे के लोग मिट्टी के साथ में पल बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एलर्जी की समस्या कम होती है।
1: ऐसा क्यों?
0: तो जैसे जैसे हमारा वेस्टर्नाइजेशन, हम एक नवीनीकरण की तरफ बढ़ते जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, नेचुरल चीज़ों से दूर होते जाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर जो है उन नेचुरल चीज़ों को भूलता जाता है। और फिर वही नेचुरल चीजें जब हमारे संपर्क में आती हैं बाद में, 2 साल बाद 3 साल बाद, तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता है कि इनको कैसे रिएक्ट करना है, और ऐसी स्थिति में वो अननेचुरल प्रतिक्रिया करता है, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे थे फूड एलर्जी की, उसी के साथ में रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी,

0: अब इसके घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर अलग कारण है, चार दीवारी के बाहर अलग कारण है. चार दीवारी के अंदर जो कारण है वो अक्सर बोलते हैं डस्ट माइट. डस्ट माइट जो है इसके अंदर ये एक छोटा कीड़ा होता है जो हमारे बिस्तर में, चादर में, सोफे में, गद्दों में पाया जाता है. ये बहुत महीन कीड़ा है जो हम आंख से नहीं देख सकते, और ये कीड़ा कुछ केमिकल बनाता है. ये केमिकल जो होते हैं जब रात को जब हम सोने के लिए गए और ये केमिकल जो है नाक के जरिए अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे इनहेलर की जरूरत पड़ना, नेबुलाइजर की जरूरत पड़ना, घुटन होना छाती के अंदर, सुबह सुबह उठते के साथ ही उनको छींके आना. कुछ लोगों को लगता है मुझे टूथपेस्ट एलर्जी है, कुछ लोगों को लगता है मुझे साबुन से एलर्जी है, पर एक्चुअल में ये डस्ट माइट की एलर्जी होती है, और ये डस्ट माइट के जो कण हैं ये इनको परेशान करते हैं. दूसरा जो मुख्य कारण है इंडोर में वो है कॉकरोच. आजकल हम सभी लोग कहते हैं कि कॉकरोच जो है वो हमारे घर में है नहीं, लेकिन कॉकरोच एक्चुअली सभी के घर में है. हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड होने की वजह से हमें दिखते नहीं, और ये कॉकरोच के जो कण हैं वो काफी दूरी तक 70 मीटर 75 मीटर 100 मीटर दूरी तक भी क्रॉस कर सकते हैं हवा में. तो ये कॉमन कारण है.
1: और ये क्या परेशानी पैदा करते हैं सर?
0: ये वंस अगेन फिर से नाक के अंदर जाएंगे तो नाक के अंदर से नजले की दिक्कत करेंगे, सांस के अंदर जाएंगे तो सांस के अंदर दिक्कत करेंगे. और ये माना जाता है कि एस्थमा, दमा के मरीजों में जिनको कॉकरोच की एलर्जी है वो काफी हानिकारक मानी जाती है, और माना जाता है कि वो काफी लंबे समय तक परेशान रहेंगे, वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं. इसी तरीके से फंगस, कभी कभी हम घरों के अंदर पेड़ पौधे लगा लेते हैं, दीवारों में सीलन आती है, तो ये फंगस जो है ये भी परेशान करती है.
1: ये एक मुख्य कारण होता है.
0: और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कल आजकल देखने आ रहा है, पेट्स, कुत्ते और जो कैट्स और जो डॉग्स और जी ये जो घर के अंदर रखते हैं ये चीजें.
1: सर इस पर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगी, उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल. हेलो.
2: हेलो मैडम
1: जी.
2: मेरी आंखें लाल रहती हैं.
1: जी जी. आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैडम मेरा नाम रोशन सिंह है.
1: जी.
2: मैं वैसे रहने वाला तो उत्तराखंड काशीपुर का हूँ, लेकिन दिल्ली में हूँ इस समय.
1: ओके.
2: हाँ. तो मेरी आंखें काफी लाल रहती हैं, ऐसी रहती हैं जैसे कोई नशा कर रखा है, जबकि नशा कोई नहीं किया है. पानी अगर सवेरे उठता हूँ, पानी से नहाता हूँ, मैं साबुन भी नहीं लगाता तो भी मेरी आंखें लाल हो जाती हैं, और मुंह धोता हूँ तो भी आंखें लाल हो जाती हैं, काफी लाल हो जाती हैं. डॉक्टर को दिखाया था, तकरीबन 15-20 साल से लगातार लाल है. डॉक्टर को बहुत दिखाया तो डॉक्टर ने आंखें चेक करके ये बताया कि इसमें कोई आपको परेशानी नहीं है, मुझे कोई जलन या खुजली शरीर नहीं, लेकिन देखने वाला सामने कहता लाल है. लेकिन डॉक्टर कह रहे तुझे कोई परेशानी नहीं तो फिर मत इलाज करा, लेकिन देखने वाला परेशान हो जाता है. मैं गुरुद्वारे में हूँ इस समय.
1: जी, जी,
2: तो
1: जी.
2: लेकिन यही कहते हैं कि तुम कोई नशा करके आया है या कुछ है.
1: डॉक्टर साहब इनके
0: जो आंखों का लालपना है, जो आंखों का लालपना है जैसे आपने बताया, तो ज्यादातर आंखों की जो एलर्जी है वो खुजली के साथ आती है, और खुजली के साथ में लालीपना होना, खुजली के साथ में आंखों से पानी चलना. तो लेकिन अगर आपने जैसे बताया कि सिर्फ लालीपना है लेकिन खुजली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एलर्जी के चांसेस कम है, क्योंकि एलर्जी के लक्षण ज्यादातर खुजली के साथ में आएंगे, बिना खुजली के चांसेस काफी कम है.
1: जी, उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा. दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस खास विषय पर हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज गुप्ता. इस विषय से जुड़े सवाल अगर आपके पास भी हैं आप हमें कॉल करिए ना, उसके लिए हमारे पास नंबर है 01123421080 और 2342102. व्हाट्सएप से मैसेज करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 9868107070. हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है। और इस विषय पर हमें बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर साहब आगे बढ़े उससे पहले एक कॉलर है, कॉल लाइन में ले लेते हैं इनको।
2: जी,
1: कॉल
2: जी।
1: हेलो।
3: हेलो, यस मैम, गुड आफ्टरनून।
1: जी जी, नमस्कार।
3: आप दोनों को मैम, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ कटिहार बिहार से।
1: जी
3: मैम, अभी जितनी सारी एलर्जी को लेके बात हो रही है ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीज मेरे लिए है, तो मैं अपना स्पेसिफिकली बताता हूँ।
1: जी,
3: जैसे है ना कि जैसे मैं सोया हुआ हूँ, उठा, फैन ऑन है, मैं सो के उठा, और जैसे उठा तो फिर जो हवा लगती है ठीक होने लगती है। फिर अगर तुरंत मैं पानी पी लिया तो उससे होने लगती है, या फिर जैसे अभी मौसम खराब है, हवा चलने लगी, धूल उड़ गया तो थोड़ा सा उससे हो जाएगा। कहीं पे गंदा जमा हुआ है, उसको अगर थोड़ा साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, तो उससे होने लगती है। तो कुछ कुछ ऐसे सही सिम्टम्स हैं।
1: जी जी।
3: जैसे अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ थोड़ी ज्यादा गर्मी है, अगर थोड़ा सा घर गांव की तरफ चला गया तो वहाँ सुबह की हवा लगती है, उससे हो जाती है, और छींक आती है, नाक से पानी जाता है, कुछ इस तरह।
1: इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर साहब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी,
2: जैसे हमने आपको बताया, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने आपको बताया कि क्योंकि आपकी नाक की जो त्वचा है वो अंदर से काफ़ी संवेदनशील हो गई है, सेंसिटिव हो गई है, जिसकी वजह से जो भी मौसम में बदलाव होते हैं, हवा, धूल के कण, ये सभी आपको परेशान करते हैं। मैं एक बहुत सरल से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। हम सभी लोग, जैसे जब महिलाएँ घर में खाना बनाती हैं और वो हाथ से नमक मिर्च कोई भी चीज़ डालती हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर हाथ में छोटा कट लग जाए और अब वो नमक को हाथ लगाएं तो नमक जलाएगा, तो नमक नहीं जला रहा है, नमक तो पहले भी नहीं जला रहा था, वो कट है जिसकी वजह से अब नमक त्वचा के संपर्क में आया तो जलन महसूस हुई। इसी तरीके से अगर नाक आपका ठीक है, संवेदनशील नहीं है, तो यही चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन अगर नाक को एलर्जी है और नाक आपका संवेदनशील है तो यही चीजें आपको महसूस करेंगी और जलाएंगी। तो उसके लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि एक बार एक आप निकट के किसी एलर्जी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी जांच कराएं, वो आपको जरूर मदद करेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, हमें वेस्ट बंगाल से सादिर लिख रहे हैं कि मेरे को बहुत तेज़ खर्राटे आते हैं और इसकी वजह से इनके परिवार वालों को भी काफ़ी दिक्कत होती है।
2: जी, तो हमें ये समझना है कि खर्राटा क्यों आता है। खर्राटा जो है वो अक्सर इस वजह से आता है कि नाक के पीछे का जो हमारा सांस लेने का रास्ता है, अगर वो रास्ता किसी कारण से थोड़ा पतला हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें खर्राटा आता है। अब ये कई कारण हो सकते हैं जिसके अंदर से, छोटे बच्चों के अंदर अक्सर ये एलर्जी होती है, नाक की एलर्जी, जिसमें पीछे के रास्ते के अंदर जो टॉन्सिल है वो टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडेनॉइड बढ़ जाता है, वो रास्ते पर दबाव डालता है तो रास्ता पतला हो जाता है तो खर्राटा आता है। यही चीज़ें 40-45 की उम्र के बाद में जो सांस के पीछे जो रास्ता है उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती हैं, जब वो कमजोर हो जाती हैं, या मोटे लोगों के अंदर, ओबीज लोगों के अंदर, तो वो दीवारें थोड़ी कमजोर हो जाती है फैट डिपोजिशन की वजह से, तो रास्ता पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। तो हर खर्राटा एलर्जी नहीं है, पर हाँ कुछ खर्राटों में एलर्जी कारण हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, रोहिणी से राज लिख रहे हैं कि इनकी वाइफ को नोज पर निशान है और डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उन्होंने हर्पिस की बीमारी बताई है, निशान अभी भी है, क्या हम आपके पास

0: आ सकते हैं, और ये क्या है प्रॉब्लम
1: तो जो
0: ये?
1: हर्पीज है, हर्पीज
0: हाँ
1: हमें समझना है कि हर्पीज एक वायरस का इन्फेक्शन है,
0: जी
1: और वायरस का इन्फेक्शन जो है या हर्पीज जो है वो एलर्जी नहीं है. लेकिन कुछ कुछ लोगों में, बच्चों में या बड़ों में, कभी कभी नाक के ऊपर एक हॉरिजेंटल क्रीज होती है जिसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं. सैल्यूट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को नाक बह रही है और बार बार वो हाथ से नाक को रगड़ते हुए ऊपर की तरफ पहुंचता है, तो नाक पे एक हॉरिजेंटल क्रीज बन जाती है, एक निशान आ जाता है जो परमानेंटली नजर आता है, तो उसको वो एलर्जी की वजह से हो सकता है.
0: जी। डॉक्टर साहब, नरेंद्र सिंह चौहान हमें उत्तराखंड से लिख रहे हैं कि नागरिक ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि खासकर दिल्ली के पर्यावरण को वो शुद्ध करने में सहायक साबित हो सके।
1: ये एक बहुत अच्छी सोच है और एक
0: जी
1: बहुत अच्छा प्रश्न है. तो ये सिर्फ एलर्जी को ही नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावकर होगी. सबसे पहला जो हमें समझना है कि सबसे पहले खुद को बदलाव करना है. सबसे पहले खुद ये करना है कि हमें किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं फैलाना है, ये सबसे पहले ज़रूरी है.
0: जी
1: फिर उसके बाद अपने आसपास के माहौल को थोड़ा बेहतर करना है, और उसके बाद आगे जाना है.
0: जी
1: तो एजुकेशन, जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप 4 और लोगों को बताएं कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग कितना हानिकारक है. मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घरों के अंदर अगर अगरबत्ती, धूप बत्ती यूज़ होती है,
0: जी
1: आप आज से ही उसको बंद कर दीजिए. ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि एक अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो
0: जी
1: 75 सिगरेट के बराबर धुआं देती है,
0: जी
1: एक धूप बत्ती 130 सिगरेट के बराबर धुआं देती है. तो आप समझिए कि अगरबत्ती, धूप बत्ती आप जला रहे हैं लेकिन कोई स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन कितनी सारी सिगरेट के धुएं के बराबर तो आप ऑलरेडी अपने फेफड़ों में लेके जा रहे
0: जी
1: हैं.
0: जी
1: तो
0: जी
1: सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरू करें, तो मुझे लगता है वहीं से ही बदलाव की शुरुआत हो जाएगी.
0: जी मनदीप झज्जर से लिख रहे हैं कि इनकी राइट साइड की तरफ फूड पाइप में घर घर की आवाज़ आती है, और छाती में ऐसे खाली खाली लगती है, राइट साइड में होता है, ऐसा क्या करें?
1: देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सभी लक्षण हैं. लक्षण जो हैं जैसे सांस की नली के अंदर दबाव की वजह से, सांस की नली में बलगम की वजह से, सूजन की वजह से, तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे सबसे पहले ये जांचना है, कराना है, PFT कराना है या ऑसिलोमेट्री कराना है, और जानना है कि ये क्या सांस की नली में सूजन है कि नहीं. दूसरा प्रश्न है कि अगर ये सांस की नली में सूजन है तो क्या एलर्जी है कि नहीं. अगर ये एलर्जी का लक्षण रखता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि एलर्जी की वजह से हो सकता है, फिर एक एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास जाके उसकी यथासंभव जांच
0: जी
1: कराना.
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं उनका कॉल। हेलो,
2: नमस्कार सर। डॉक्टर
1: नमस्कार जी.
2: साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार.
0: नमस्कार, आप सवाल पूछिए अपना।
2: मैं आरडी जिला राजस्थान से बोल रहा हूँ, हसीराम मेरा नाम।
0: जी,
2: एलर्जी है।
0: आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा सा क्लियर। जी
2: मेरे नाक में बहुत परेशानी रहती, पानी बहता रहता है
0: जी
2: और नाक बंद हो जाता है और पानी अंदर गले में गिरता है और
0: जी
2: छींकें बहुत आती है।
0: जी
2: को करता हूँ तो बहुत जल्दी है। एक परेशानी तो ये है, और एक जो कभी कभी जैसे कुछ खाया तो रात को 1-2 बजे सांस की बहुत परेशानी हो जाती है, और ठीक होगा
0: जी जी
1: तो धन्यवाद आपके प्रश्न का. जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि जो सबसे कॉमन समस्या है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी, सांस की एलर्जी है, जिसमें नाक की समस्या, सांस की समस्या जो अक्सर रात में या अर्ली मॉर्निंग के अंदर आती है, और बिल्कुल वैसे ही लक्षण आपने बताए. तो इसके लिए जो आपके आसपास बगल में अच्छे एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब से मिलके उनसे नाक की जाँच, सांस की जाँच कराएं, उसके बाद वो आपको कुछ दवाएँ लिख के देंगे, नाक का स्प्रे, इन्हेलर की कुछ दवाएँ लिख के देंगे, कुछ जाँचें करेंगे, कारण बताएंगे क्यों है, और साथ में उनके निदान को भी बताएंगे कि कैसे बचना है इस एलर्जी से.
0: जी डॉक्टर साहब, हमें सुकांता बालो जोधपुर राजस्थान से लिख रहे हैं कि इनको एक परेशानी है कि इनकी नाक पर पिंपल आ गए हैं, और जब ये सनलाइट से घर आते हैं तो इनको एलर्जी फील होती है, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया लेकिन उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह दी जिससे इनको अभी राहत नहीं मिली, तो ये क्या करें?
1: ज़्यादातर स्थिति के अंदर जो पिंपल्स होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से या फैट की
0: जी
1: वजह से होते हैं. पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कभी गर्म से सर्द में या सर्द से गर्म में कभी जाएंगे और लक्षण अगर बढ़ जाते हैं, इसका मतलब आपकी नाक की त्वचा अंदर से संवेदनशील है. अगर वो अंदर से संवेदनशील है तो उसका कारण जानने की ज़रूरत है कि क्या ये एलर्जी है या ये एलर्जी नहीं है. तो वो जाँच करके पता चलेगा, कुछ एलर्जी के टेस्ट होते हैं जिनसे जाना जा सकता है कि क्या आप वाकई में एलर्जी से ग्रसित हैं कि नहीं है.
0: हाँ डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पे ले लेते हैं पहले उनका कॉल। हेलो
1: जी.
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार
0: नमस्कार
3: जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्ते जी.
3: जी मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव खोखनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: जी
3: अच्छा सर, वर्ष 2002 में मैं ज्यादा बीमार हुआ था, मतलब बुखार वगैरह और भी प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद मुझे मतलब बलगम रहने लगी, खांसी में लगातार बहुत खांसी उठती है, मैंने बहुत इलाज करा लिया, यहाँ कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली में है, और बाकी और हॉस्पिटल से भी कराया है जी, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ, आराम वो आराम नहीं मिला। मतलब ईएनटी वाले को भी दिखाया यहीं करनाल में, और जो ये टेस्ट स्पेशलिस्ट टीबी वाले डॉक्टर इनको भी दिखाया जी,
1: जी।
3: तो बात यह है कि जो है ना बार बार थूकना पड़ता है, उसके खंडे टाइम के बीच में उसको थूकना पड़ता है बलगम, या कई बार अंदर निकलनी पड़ती है, तो इलाज बताएं।
1: जैसे आप बता रहे हैं कि बलगम जो ऐसा लगता है जैसे आपकी सांस की नली में अधिक बनता है, और अभी हम जैसे जिक्र कर रहे थे कि बलगम जो अधिक बनना है वो इन्फेक्शन में भी हो सकता है, एलर्जी में भी हो सकता है, तो जो भी आपकी जांचें हुई हैं, जो भी आपके डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सबसे पहले वो ये बताएंगे कि ये जो बलगम जो बन रहा है अधिक, ये क्या इन्फेक्शन की वजह से कि एलर्जी की वजह से। अगर ये एलर्जी की वजह से आता है और वो डॉक्टर साहब को लगता है एलर्जी की वजह से है, तो उस स्थिति के अंदर एलर्जी की जाँचें महत्वपूर्ण रहेंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको वाकई में किसी किस्म की एलर्जी हो जो काफ़ी समय से पकड़ में ना पाई हो, और जिसकी वजह से आप समस्या से जूझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक एलर्जी के जानकार डॉक्टर से भी मिल लीजिए, वो बेहतर रहेगा
0: जी। डॉक्टर साहब, वीरू बख्शी हमें मेरठ से लिख रहे हैं कि इनके लेग पर कट पड़ जाते हैं और वहाँ पर इनको खुजली होती है, जिसके कारण ये इनको चलने में थोड़ी दिक्कत होती है और खुजली करने पर खून निकलता है, तो क्या इनको करना चाहिए?
1: जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये खुजली होती है, और ये इसका मतलब ये है कि त्वचा में एक लेवल की एक्जिमा की शिकायत है। एक्जिमा एक तरीके की एलर्जी होती है, पर अक्सर ज़्यादातर एक्जिमा जो हैं वो जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट कोलीग्स होते हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, पर हम उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कुछ कारण जैसे व्हीट एलर्जी हो गई, या डस्ट माइट एलर्जी हो गई, या कुछ और तरीके की एलर्जीज हो गई, वो कभी कभी एक्जिमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कभी कभी हम टेस्ट करके उसमें मदद कर पाते हैं। पर स्किन की केयर जो है वो सबसे पहले इसके अंदर एसेंशियल है, अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ, कुछ दवाओं के साथ, कुछ मलम के साथ में स्किन की केयर बहुत जरूरी है
0: जी। डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से मैसेज कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि मेरे हस्बैंड को और मुझे थायराइड की समस्या है, कभी कभी गले में खिचखिच होती है, क्या ये थायराइड की वजह से होती है या कोई एलर्जी इसका कारण है?
1: जो गले में खिचखिच होना है उसका और थायराइड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है
0: जी।
1: जो गले में खिचखिच होना है, हाँ, वो पोस्ट नेजल ड्रिप, जैसे हमने कहा कि नाक के अंदर एलर्जी होने की वजह से अगर पानी पीछे टपकता है तो हो सकती है, या कभी कभी एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं कि तेजाब की मात्रा अधिक बनना, एसिडिटी अधिक बनना, उसकी वजह से, रिफ्लेक्स की वजह से भी गले के अंदर कभी कभी तेजाब आ जाता है और खिचखिच की समस्या हो सकती है
0: जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हमें कई हमारे श्रोता जो हैं व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे हैं कि उनको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और आपके द्वारा दी गई जानकारियाँ उनको बहुत खास लग रही है। इसके साथ ही हमें पवन कुमार शर्मा हुलास रोधापुर जिला बिहार से लिख रहे हैं कि मुझे घुमोरियों जैसे कुछ कुछ हो जाता है, हर साल एक ही जगह पर मुझे ये प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए, मैं इससे काफी परेशान हूँ
1: जी। ये जो घुमोरियां आप बता रहे हैं, इसको हमारी मेडिकल भाषा में काफी कुछ समय पर अर्टिकेरिया कहते हैं, और ये अर्टिकेरिया अगर कुछ समय के लिए चलता है, 2-4 दिन 10 दिन चलता है, तो वो अक्सर वायरल इन्फेक्शन के साथ में, मौसम बदलाव के साथ में हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज जो होती है वो 2 या 3 महीने से अधिक चलती है, क्वालिटी ऑफ को प्रभावित करती है, तब ऐसी स्थिति में ये एलर्जी की वजह से हो सकता है
0: जी। एक और हमें देहरादून से मैसेज मिला है उषा जी का, वो लिख रही हैं कि जब भी घर की क्लीनिंग करती हूँ तो डस्ट के कांटेक्ट में आने से पूरी बॉडी पर एलर्जी रैशेस जैसा निकल जाता है और बहुत इचिंग होती है, मुझे कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी है
1: जी।
0: ऐसे में ये क्या करें?
1: जैसे मैंने बताया आपको, कि डस्ट माइट एक इस तरीके का कीटाणु है जो कण जो रिलीज करता है, वो कण जो है अगर सांस की नली में जाते हैं तो नाक की समस्या करते हैं, सांस की समस्या करते हैं, और अगर वही कण चमड़ी पर लगते हैं तो चमड़ी के अंदर भी वो खुजली की समस्या, एक्जिमा की समस्या, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
0: हाँ।
1: जैसा आप मुझे बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई आपके उस डस्ट के अंदर वो पार्टिकल्स हैं जिनको के पता लगाना जरूरी है।
0: हाँ।
1: कि वो क्या पार्टिकल्स हैं, और अगर उनको पता लगा के उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पर आपके लिए तब तक के लिए एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि घर में ड्राई डस्टिंग न करें।
0: हाँ।
1: आप जो भी करें, वेट मॉपिंग, गीले पोछे की सफाई करें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, वो शायद ज़्यादा फायदेमंद रहे।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लाइन पर ले लेते हैं उनका कॉल भी। हेलो
4: हेलो
0: जी,
4: नमस्कार आप दोनों को।
0: नमस्कार मैम,
4: मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे पूछा था कि मुझे
0: नाम बताइए मैम अपना।
4: सपना।
0: ओके।
4: हाँ जी, मुझे पूछा था कि मुझे कुछ सालों से, 6-7 सालों से ठंडी चीजें खाने से, दूध दही, मीठी चीजें खाने से, खट्टी चीजें, चावल, दालें, छोले, राजमा, इन सब पे दर्दें बहुत ज्यादा होती हैं। और अब तो मतलब जॉइंट्स में भी हो रहे हैं, जबकि मेरे आर ए फैक्टर, CRG सब नॉर्मल है। तो क्या ये एलर्जी है? और सेकंड क्वेश्चन था कि धूप अगरबत्ती घर में जलाने से, जोत जलाने से, आरती करते हैं जो
0: जी,
4: तो क्या उससे भी पॉल्यूशन होता है?
1: तो जब का पहला प्रश्न है जिसके अंदर आपने पूछा, तो ये सीधे सीधे लक्षण एलर्जी के नहीं हैं। कभी कभी हमारे को कुछ अलग तरीके की बीमारियां होती हैं जो एलर्जी जैसे हमें लगती हैं। कभी कभी शरीर के अंदर विटामिन डी B12 की कमी होती है, कभी कुछ और तकलीफें होती हैं जिसको मास्ट सेल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जो बहुत रेयरली ही हम पकड़ पाते हैं, ज़्यादातर डिसऑर्डर्स नहीं देख पाते हैं। तो उनके सब ये लक्षण हो सकते हैं जो आप मुझे बता रहे हैं, पर ये सीधे सीधे

0: एनर्जी नहीं लगती है। दूसरी बात, बिल्कुल धूप बत्ती अगरबत्ती जो है वो काफी ज्यादा नुकसान करती है, अभी हमने बात किया। लेकिन हाँ, इसका सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव, सबसे अच्छा उपाय है कि जोत जलाना। तो आप जोत जला सकते हैं और उससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं।
1: जी, डॉक्टर साहब एक सवाल है, जिन लोगों को पहले से स्किन, किसी तरह की भी स्किन एलर्जी है, क्या ऐसे लोगों को घर पर पेट्स से दूरी बनाकर रखनी चाहिए?
0: देखिए, हमें ये समझना है कि जो हमारी त्वचा है, जो स्किन है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ये स्किन जो होती है, ये हमारे पूरे शरीर को, पूरे अंगों को बचा कर रखती है। और ये स्किन का एक रोबस्ट, एक रिजिड, एक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरीके से हमारे शरीर के किले की वो मजबूत दीवार है, जिसके अंदर कभी भी अगर कोई किसी किस्म की तकलीफ होगी, होल्स होंगे, वो सेंसिटिव होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर एलर्जीज हमारे को अधिक होंगी। तो जो लोग, जिनको स्किन की समस्या है, उनको हमेशा तरीके की एलर्जीज अधिक आएंगी, ज़्यादा आएंगी, बार बार आएंगी, परेशान करेंगी। और रही बात पेट्स की, तो पेट्स के लिए तो हम जनरली बोलते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एलर्जी है, उसके लिए कोई भी पेट रिकमेंडेड नहीं है, चाहे उनको पेट से एलर्जी हो या ना हो।
1: जी, डॉक्टर साहब आजकल फूड एलर्जी की बहुत चर्चा होती है, फूड एलर्जी में और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है, क्या किन खाद्य पदार्थों से सबसे ज्यादा एलर्जी हो सकती है?
0: ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने पूछा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं कोई एक चीज़ खाता हूँ, जैसे कोई कहता है मैं गोभी खाता हूँ या मैं ये चीज़ खाता हूँ, और उसके बाद मेरे पेट में थोड़ा अफारा आ जाता है, गैस बन जाती है, पेट फूलने लगता है या उल्टी होती है।
1: फूड एलर्जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में क्या अंतर है?
0: हाँ वही बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं जब कभी कोई खाना खाता हूँ, ये कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाता हूँ, उससे मुझे पेट के लक्षण आ जाते हैं, गैस बन जाती है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उनको उस चीज से एलर्जी है। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनटॉलरेंस है। इनटॉलरेंस क्या होती है कि उस शरीर के, उस फूड के जो कार्बोहाइड्रेट का जो पोर्शन है, उसको शरीर ढंग से पचा नहीं पाता, और जिसकी वजह से उसको गैशियस डिस्टेंशन, गैस बनने लगती है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेट की समस्याएं आती हैं, तो ये इंटॉलरेंस के लक्षण है। लेकिन जो वाकई में फूड एलर्जी है, वो उसके प्रोटीन की मात्रा की वजह से होती है, जिसमें लक्षण जरूरी नहीं है पेट के आए। हो सकता है उसको शरीर पर खुजली होनी शुरू हो जाए, हो सकता है उसको छींके आने लग जाए, हो सकता है सांस फूलने लग जाए, आँख की समस्या आने लग जाए, जबकि उसने फूड का संपर्क हुआ है। जिसको ट्रू फूड एलर्जी है, कभी कभी वो फूड को सिर्फ टच भी करता है, तो टच करने से भी उसको लक्षण आ सकते हैं, उसको खाना भी जरूरी नहीं है उसको। तो फूड एलर्जी और इंटॉलरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी से रिलेटेड जो टेस्टिस हैं, उनके बारे में बताइए, और क्या कोई आधुनिक इलाज आज उपलब्ध है एलर्जीज के लिए?
0: ये ना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले एलर्जी के अंदर हिस्ट्री मतलब मरीज से बात करना। बहुत बार हम मरीज से लगभग आधा घंटा भी बात करते हैं, उनसे बहुत सारी तरीके के सवाल पूछते हैं, उनके बीमारी से संबंधित काफ़ी सवाल होते हैं, जो बीमारी से संबंधित नहीं भी होते, घर के वातावरण के बारे में, धूप कितनी आती है, सनलाइट कितनी है, उसके साथ में वेंटिलेशन कैसा है घर के अंदर, घर में कोई पेड़ पौधे तो नहीं है, घर की दीवारें कैसी हैं, सीलन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत बार आपने गौर किया होगा, स्पेशली पेट्स की जो एलर्जी होती है, जैसे कैट की, बिल्ली की जो एलर्जी है, तो कैट के जो डेंडर्स की एलर्जी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपका बच्चा स्कूल गया है और उसकी क्लास में कोई एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में कैट है, और वो कैट में अपने घर से खेलता है, और वो यहाँ पे आता है, कैट के डेंडर अपने कपड़ों पे लेके आता है, वही डेंडर आपके बच्चे के कपड़ों पे पैसिवली ट्रांसफर होते हैं और आपके बच्चे को लक्षण आ जाते हैं, और आपका बच्चा कभी कैट के पास गया ही नहीं। तो हिस्ट्री हमारे लिए सबसे बड़ी क्लू होती है। उसके बाद में फिर हिस्ट्री लेने के बाद में फिर हम एलर्जी टेस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर मैं सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो लेबोरेटरीज में जाके खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एलर्जी टेस्ट करा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक जानकार डॉक्टर के पास जाके एलर्जी के जो एक हिस्ट्री है उसको एक डिटेल में इवेलुएट करके, और फिर आपके लिए जो टेस्ट सही है वही आपको चूज करना चाहिए, जो एक डॉक्टर ही चूज कर पाएंगे। फिर उन टेस्ट के माध्यम से जो चीजें निकलती हैं उनको वापस लक्षणों से मैच करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको इन इन चीजों से एलर्जी है। ये टेस्ट अक्सर दो तरीके के होते हैं, एक चमड़ी के ऊपर हल्के सुई से टच करके करते हैं, जिसको स्किन प्रिक टेस्ट बोलते हैं, बड़ा सरल टेस्ट होता है, आसान टेस्ट होता है, और दूसरा ब्लड टेस्ट होता है। और ये टेस्ट जो होते हैं, इनके माध्यम से हम पता कर पाते हैं कि किन चीज़ों से एलर्जी है। फिर कुछ आपको बचाव के उपाय बताते हैं, या आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताते हैं जिसको आज की तारीख में इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी का दूसरा नाम एलर्जी वैक्सीन भी है। ये इम्यूनोथेरेपी जो होती है, इसको अगर दिया जाए तो एलर्जी के कारणों को काफ़ी हद तक जड़ से दूर किया जा सकता है, और ये लगभग 3 से 5 साल का इलाज होता है, जिसके बाद में लोगों की नाक की एलर्जी, दमे की एलर्जी, और जो इन्हेलर नेबुलाइजर की जो ज़रूरतें हैं वो सब लगभग तमाम उम्र के लिए ख़त्म भी हो सकती हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं बच्चों की, बच्चों में एलर्जी होने का कारण क्या रहता है, और इनको कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं कि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके?
0: जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे हमने बात किया जेनेटिक का

0: मतलब ये कि अनुवांशिक अगर मम्मी पापा के अंदर दादा दादी में नाना नानी में कहीं पे भी ब्लड रिलेटेड किसी तरीके की एलर्जी रही है तो उनके अंदर बच्चों के होने के चांसेस अधिक
1: ज्यादा है।
0: सेकंड, अगर मदर या इवन ग्रैंड मदर ने कभी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान में स्मोकिंग किया है तो वो स्मोकिंग जो है वो जो बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है उनको भी आगे एलर्जी की तरफ धकेल देता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिलीवरीज। डिलीवरी के अंदर जो बच्चे वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं उनको एलर्जीज कम होती है, जो सीजरियन सेक्शन से बॉर्न हुए हैं उनको अधिक होती है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत के पहले 6 महीने माँ का दूध सर्वोपरि है, जो होना चाहिए जरूरी है, एलर्जी से बचाता है। फिर उसके बाद ऊपर का खान पान जो हमारे एलर्जी करने के जो कारण है, जैसे मैंने आपको बताया दूध अंडा पीनट जो हर तरीके के जो फूड आइटम्स हैं हम जनरली कहते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे के डाइट में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। तो वीनिंग जो है वो टाइमली शुरू होनी चाहिए, अगर हम वीनिंग टाइमली नहीं करते डिले करते हैं तो एलर्जी हमारे होने के चांसेस अधिक होते हैं। घर में अगर दूसरे तीसरे साल के अंदर कोई पेट्स को लेकर आए हैं, कुत्ता बिल्ली को लेकर आए हैं तो वो एलर्जी के कारण बन सकते हैं। तो कभी अगर मान लीजिए किसी बच्चे की त्वचा अच्छी नहीं है, उसकी स्किन जो है उसको एक्जिमा है, तो उसमें एलर्जी के होने के चांसेस अधिक होते हैं। और अगर इन्हीं चीजों को तरीके से बचाव किया जाए तो यही एलर्जी को बचाव भी कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, स्कूल में किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके, क्योंकि बच्चे ना रोज एक लंबा समय स्कूल में बिताते हैं।
0: ये बहुत अहम प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि जितने भी स्कूल के अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इसको बहुत गौर करें इस चीज के लिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक बहुत लंबा समय जो है स्कूल में बिताते हैं और स्कूल के अंदर बच्चे खाना भी खाते हैं, शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ, बर्थडे पार्टी हो रही है तो केक भी खाते हैं। और कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को मान लीजिए कोई दूध की या अंडे की एलर्जी है लेकिन उसको बिना जाने अगर उसको एक्सपोजर हो जाए केक का या किसी दूसरे की फूड शेयरिंग का तो ऐसी स्थिति में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले स्कूल अवेयरनेस, तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको बोलते हैं एलर्जी स्कूल। इस एलर्जी स्कूल के अंदर हम स्कूल्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में उनको अवेयर करते हैं, सभी को बताते हैं कि क्या क्या एलर्जीज हो सकती हैं। खाना जो है वो हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इस तरीके की तकलीफ है तो उसको खाना शेयरिंग के लिए फोर्स न किया जाए, बल्कि उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उस तरीके की टेबल्स बनाई जाएं सेपरेटली कि ये पर्टिकुलर टेबल मिल्क एलर्जिक बच्चों के लिए है, ये पर्टिकुलर टेबल एग एलर्जिक बच्चों के लिए है। इसी तरीके से जो स्कूल्स की कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स के अंदर बहुत कॉमन जगह है जहाँ पे के फूड की मिक्सिंग हो सकती है कि किसी बच्चे को एक चीज़ से और दूसरी चीज़ से एलर्जी है और वो आपस में मिक्स हो गई और बच्चे को पता भी नहीं चला कि उसने कब कंज्यूम कर लिया और उसको तकलीफ हो गई। जो स्कूल का जो स्टाफ है, जो स्कूल के अंदर जो नर्सेज होते हैं, वो इक्विप होनी चाहिए कि अगर किसी को एलर्जी की समस्या आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है, कब उसको नेबुलाइजर देना है, कब इनहेलर देना है और जानलेवा अगर तकलीफ हो सकती है तो उसके लिए क्या इंजेक्शन जो लगाना है और तुरंत लगाना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो अवेयरनेस जो है, जानकारी, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे इस मुहिम के साथ, एलर्जी स्कूल के मुहिम के साथ जरूर जुड़ें और इस जानकारी को हर स्कूल हर बच्चे तक जरूर पहुंचाएं।
1: जी सर, आपने अभी जानलेवा की बात की, तो क्या कभी एलर्जी जानलेवा भी हो सकती है? यदि किसी व्यक्ति को अचानक गंभीर एलर्जी हो जाए तो परिवार को तुरंत क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल हो सकती है, एलर्जी जानलेवा हो सकती है। एलर्जी के अंदर सांस की नली के अंदर घुटन आ सकती है, सांस की नली बंद हो सकती है, चोक हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंसान का गिर सकता है और जिस तकलीफ को हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, तो एनाफाइलेक्सिस अगर किसी को भी होता है तो उस समय के ऊपर एक इंजेक्शन होता है जिसको एड्रेनालिन कहा जाता है, वो इमीडिएटली तुरंत मरीज के लिए जान को बचाता है जो उसके लिए देना जरूरी है। और अगर कभी भी किसी को इस तरीके का एनाफाइलेक्सिस हुआ है तो एनाफाइलेक्सिस को मैनेज करने के बाद उसको एलर्जी स्पेशलिस्ट से सलाह करना चाहिए, कारण जानने चाहिए जिससे भविष्य के अंदर उस एनाफाइलेक्सिस को बचाया जा सके। और आगे कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिनको लाइफ को बचाने के लिए उनको अपने पास रखा जा सके प्रिवेंशन के तौर पर।
1: डॉक्टर साहब, क्या कुछ हिडन एलर्जीज भी होती हैं जो किसी खास परिस्थिति में उभरती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे कारण है, जैसे एक है इम्प्रॉपर लेबलिंग ऑफ फूड्स। बहुत बार आपने देखा है कि खाने पीने के अंदर जो लेबल्स या तो होते ही नहीं है, लेबल लगे होते हैं तो उसमें आधी अधूरी चीजें लिखी होती हैं, पूरी तरीके से चीजें नहीं लिखी होती, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो नहीं बताते कि इसमें क्या चीजें हैं। कभी कभी फूड की मिक्सिंग होती है, आप एक ही रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहीं पर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ एक ही शेफ जो है वो बना रहा है, परोस रहा है और कभी कभी सेम ग्लव्स के साथ इधर और उधर मिक्सिंग होती है। तो ये जो सारे कारण हैं ये हिडन एलर्जेंस होते हैं। आजकल हम लोग व्हीट नहीं खाते, आजकल हम लोग जो होते हैं बड़े मिक्स फूड खाते हैं, जैसे पिज्जा पास्ता। ये जो पिज्जा पास्ता है क्या है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट का, जिसके अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि कभी किसी को नट की एलर्जी है, किसी को व्हीट की एलर्जी है और वो उभर के एकदम से सामने आ सकती है। और इसी तरीके से कभी कभी कुछ लोगों को पार्शियल एलर्जी होती है, जैसे व्हीट से थोड़ी एलर्जी है और उसी के साथ कोई दूसरा ट्रिगर जैसे पेन किलर की मेडिसिन खा लिया, एक्सरसाइज कर लिया, जिसको हम बोलते हैं फूड डिपेंडेंट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस, या हमें दो या तीन ट्रिगर डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन में चाहिए होते हैं, तब जाके मरीज को उस एलर्जी के लक्षण आते हैं, लेकिन एक ट्रिगर से वो एलर्जी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एलर्जी अवेयरनेस के लिए विभिन्न जो गतिविधियाँ की

0: जाती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए।
1: देखिए, एलर्जी अवेयरनेस के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो काफ़ी जोरों शोरों से काफ़ी गतिविधियां कर रहे हैं। जैसे मैं आज अगर देखें तो FM एयर का काफ़ी शुक्रगुजार हूं इस मौके को देने के लिए, आप सभी से बात करने के लिए। इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, हमारा भी अपना एक सोशल चैनल है आई सास के नाम से, उस पर करते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में हम सभी से जुड़ें और हम उस अवेयरनेस के लिए हम उन सबसे सबको बात करते रहें।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, एलर्जी को लेकर ना समाज में की भ्रांतियां हैं कि बच्चों को जो एलर्जी है अपने आप ठीक हो जाती है, आप इन मिथकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एलर्जीज का इलाज नहीं है, कई ऐसे मिथक
1: जी, हैं। जी, जी जी जी जो कभी काफी लोग कहते हैं कि जैसे एलर्जी तो अल्लाह की मर्जी है, काफी लोग कहते हैं कि एलर्जी तो जन्म के साथ आई है तो वो मरने के साथ ही जाएगी, वो नहीं जाएगी, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि एलर्जी को हमें समझना जरूरी है कि एलर्जी क्यों हो रही है, हमारा शरीर की प्रतिक्रिया किसी दूसरी चीज को क्यों रिएक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद एक बार वो समझ में आए तो उसके बाद में उसका यथासंभव टेस्ट और यथासंभव इलाज किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इम्यूनोथेरेपी। दूसरी चीज जो है बचाव, बचाव एक बहुत जरूरी है। ये एलर्जी जो है ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो लोग गांव में रहते थे, जो लोग पुराने लाइफस्टाइल के साथ जीते थे, उनमें एलर्जीज कम मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विदेशीकरण की तरफ बढ़ते हैं, हम बहुत हाइजीन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम कहीं ना कहीं अपने जो पुराने जो मिट्टी और जो बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ते चले जाते हैं, और शायद उसी वजह से हमारा शरीर कभी सीख नहीं पाता कि इन चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से कैसे रिएक्ट करना है, और फिर जब एकदम से किसी चीज़ के संपर्क में आता है तो फिर वो एबनॉर्मली रिएक्ट करता है। तो ये एक लाइफस्टाइल को हमें सुधारना है
0: कि सादा जीवन, सरल जीवन ही
1: सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो बहुत जरूरी है, जो हमें समझना जरूरी है।
0: डॉक्टर साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम में बहुत कम समय रह गया और आज हमने बहुत सी कार्या इस विषय पर प्राप्त किया आपसे, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कौन सी बातें जिन्हें हर व्यक्ति को एलर्जी के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना है कि एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है। अगर देखें प्रैक्टिकली तो हर एक व्यक्ति जो है किसी न किसी एलर्जी से सफर कर चुका है, गुजर चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको छींके ना आई हो, सांस ना फूला हो, तो हर एक व्यक्ति जो है उसको सफर कर चुका है। तो एक बहुत कॉमन चीज है, और अगर इसको तरीके से अप्रोच किया जाए तो हाँ, ये एलर्जी का इलाज किया जा सकता है। दूसरा, हमें ये समझना है कि एलर्जी को अगर न ढंग से किया जाए तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रभावित करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं, अगर आज एक बच्चा है जिसको सांस फूल रहा है, जो अपना बच्चा रात को सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसके पेरेंट्स भी बेचैन हैं, वो पेरेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रभावित है, वो भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात हमें समझना है कि ऐसा नहीं है कि एलर्जी का इलाज नहीं किया जा सकता। समय रहते अगर एलर्जी के कारणों को पकड़ा जाए, उनको दूर किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अगर उनका इलाज किया जाए, तो उसको बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति अपनी साधारण लाइफ जी सकता है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: तो आज हमने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में बात की, एलर्जी केयर इज एसेंशियल केयर, यानी एलर्जी की देखभाल आवश्यक है, और इस पर हमें खास जानकारी दी डॉक्टर नीरज गुप्ता ने, जो है एलर्जी स्पेशलिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे इस शो में आए और हमें इतनी खास जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's Defense Investiture Ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, साथ ही मौजूद हैं इस वक्त सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएं देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
2: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
1: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं, जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
2: टोटल ऑफ 105 अवार्ड्स विल बी कॉन्फर्ड टू द अवार्डीज टुडे, अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट दैट ऑनर्स आर्म्ड फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
1: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंड मास्टर हैं महा रेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में

पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियां पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके एडीसीज चलते हुए। धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह
1: राष्ट्रपति महोदया आप

0: की अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
1: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: The first set of awards that
3: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट।

0: Lieutenant General Neeraj Vashney wishes Seva Medal.
1: Lieutenant General Neeraj Vashney, VSM, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला सेना मेडल बा।
2: Lieutenant General Vikas Rohela, Sena Medal, the Corps of Engineers, to receive the Ati Vishesht Seva Medal.
1: Lieutenant General Vikas Rohela, apne sainik paridhan mein Corps of Engineers ke aap adhikari hain aur apna samman prapt karke Rashtrapati ji ko salute karte
0: hain. Harbinder Singh Vandra, Sena Medal.
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह वाईएसएम एसएम सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हुए
0: लेफ्टिनेंट जनरल साक्षी बनते हुए रंजीत सिंह।
2: Lieutenant General Ranjit Singh, the Regiment of Artillery, saluting the President and marching towards the dais.
1: Artillery ke adhikari hain aap, Lieutenant General Ranjit Singh, Regiment of Artillery ke ati vishisht seva medal aur ye salute.
0: Lieutenant General Ajay Kumar, vishisht seva medal.
2: Lieutenant General Ajay Kumar, Vishesh Seva Medal, the Infantry.
1: Infantry ke adhikari, Lieutenant General Ajay Kumar, Ati Vishesh Seva Medal prapt karte hue.
2: Decorated with the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Sena Medal.
1: Lieutenant General Shamsher Singh Virk, Infantry ke adhikari hain aur Bharatiya सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह वी आर हियर रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
0: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: The Brigade of the Guards के Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: Lieutenant General Aditya Vikram Singh Rathi सेवा मेडल receiving अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप। राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन।
2: लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
1: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल चियारत गोपालन मुरलीधरन। भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी पुत्री।
0: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा VSM प्राप्त कर चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया। पुत्री और पत्नी।
0: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई VSM प्राप्त कर चुके हैं। आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है। नेवी का जो अलग सैल्यूट होता है उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अब प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
1: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के। भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
3: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
3: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
1: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें VSM मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल।

0: Vivek Khande receiving that Vishesh Seva Medal.
1: Air Marshal Mehtab Singh Deswal, Vayu Sena Medal, Udaan Pilot.
2: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी. एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल.
2: एयर मार्शल कोंडेन कोलांगरा अबू अहमद संजीव बीएसएम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल.
0: Air Vice Marshal, now Air Marshal Settipalli Srinivasa Rao, Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, receiving the Ati Vishisht Seva Medal from the President.
2: Aeronautical Engineering Electronics ke Air Vice Marshal, ab Air Marshal hain aap, Settipalli Srinivasa Rao, Ati Vishisht Seva Medal praapt karte hue, Bharatiya Vayu Sena ke adhikari, Rashtrapati ji ko.
1: Upper Mahanideshak Donnie Michael, President's Tat Rakshak Medal, Tat Rakshak Medal.
0: Additional Director General Donnie Michael, PTM, TM.
2: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डोनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल. मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए
1: Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, Seva Nivrit.
0: Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai, Seva Medal, VSM, retired.
2: Nari Shakti ka pratik, Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai, Vishisht Seva Medal prapt kar chuki hain, ab Seva Nivrit hai, lekin aaj samman karti hue महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई. और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं.
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल बार विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा सेना मेडल वीएसएम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पिल विशिष्ट सेवा मेडल.
2: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की. विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल Sujit Shivaji Patil, VSM, the infantry, receiving the Ati Vishisht Seva Medal.
1: Major General Gurpreet Singh Chaudhary, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
0: Next recipient of the Ati Vishisht Seva Medal, Major General Sujit, beg your pardon, Major General Gurpreet Singh Chaudhary, SM, VSM, the Army Air Defence.
2: Army Air Defence ke adhikari, Major General Gurpreet Singh Chaudhary. विशिष्ट सेवा मेडल आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल. सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल.
0: मेजर जनरल आशीष शाह सेना मेडल. द आर्मड कॉर्प्स मार्चिंग टुवर्ड्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: आर्मड कोर के अधिकारी मेजर जनरल आशीष साह महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए और प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल.
1: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा मेडल.
0: मेजर जनरल अमर राम दसानी युद्ध सेवा

0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल अमर रामदासानी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सामने मौजूद हैं और प्राप्त कर रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल विकास चौधरी युद्ध सेवा मेडल।
2: Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal, the Infantry, to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
0: Salute करते हुए और जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने Major General Vikas Chaudhary युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। Infantry के अधिकारी हैं। और एक जोशीली मुस्कान उनके चेहरे पर सलामी देते हुए
1: Major General Tarun Agrawal।
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
1: मेजर जनरल बूदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, the Regiment of Artillery, saluting the President and receiving the Ati Vishesh Seva Medal.
0: The Regiment of Artillery ka adhikari Major General Vudev Parida, Vishesh Seva Medal, inhe pradan kiya ja chuka hai, Ati Vishesh Seva Medal.
1: Major General Sumit Mehta, Vishesh Seva Medal.
2: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
1: Major General Vikrant Suresh Deshpande.
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देशपांडे, इन्फेंट्री।
1: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Kuleshwar Singh Datwal, earlier recipient of Sena Medal and Vishesh Sena Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ka adhikari Major General Kuleshwar Singh Datwal, Vishesh Seva Medal se alankrit ho chuke hain aur aaj alankrit honge Ati Vishesh Seva Medal se. Ye ek aur khushi ki baat ki unki putri
1: Major General Vivek Narang.
2: Major General Vivek Narang from the Infantry, saluting the President.
0: Infantry ke adhikari hain Major General Vivek Narang. Rashtrapati ji ke theek samne apna padak grahan karte hue Ati Vishisht Seva Medal. Garvili muskan unki putri aur patni taaliyan bajakar.
1: Major General Parambir Singh Punia, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
2: Major General Paranveer Singh Punia, Seva Medal, Vishesh Seva Medal, will receive the Ati Vishesh Seva Medal.
0: Infantry ke ek aur adhikari Paranveer Singh Punia, Vishesh Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, prapt karenge Rashtrapati ji se.

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, YSM SM, रिसीविंग गति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल। सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग दैट विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी एसएम बीएसएम मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल।

0: एसएम बीएसएम मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौड़ अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
1: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
1: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह सेना मेडल इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब आ रही है नौसेना के अधिकारियों की रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से।
1: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी।
2: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी मेडिकल टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: The next recipient of Ati Vishish Seva Medal is Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht, VM Flying Pilot.
0: Abari, भारतीय वायु सेना के इस पायलट की Air Vice Marshal Sanjeev Vashisht Ati Vishisht Seva Medal आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ।

0: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal.
1: Air Vice Marshal Vadapalli Ravi Satyanarayan Raju Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, to receive that Vishisht Seva Medal.
2: और अब वायुसेना के एक और अधिकारी एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार, एयर वाइस मार्शल वाडापल्ली रवि सत्यनारायण राजू विशिष्ट सेवा मेडल, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल विंग के अधिकारी हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा।
0: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, VM flying pilot,
2: अब भारती,
1: receiving that विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल संजीव कुमार तालियान, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह,
1: एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, एडमिनिस्ट्रेशन फाइटर कंट्रोलर।
2: भारतीय वायुसेना के फाइटर कंट्रोलर हैं एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, आपको प्राप्त होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: आपकी सेवाओं के लिए।
1: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, वायु सेना मेडल उड़ान पायलट।
2: एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा, BM फ्लाइंग पायलट, इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अब बारी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की एयर वाइस मार्शल मनु मिड्ढा की। आप एक पायलट हैं।
1: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, विशिष्ट सेवा मेडल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज एक और उपलब्धि इनके कैरियर में जुड़ती हुई, इन्हें मिलता हुआ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल राजेश अरुण मोघे, BSM, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, रिटायर्ड, इज रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल संदीप कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, द जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट, रिटायर हो चुके हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। और
1: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख, सेवानिवृत्त।
2: मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, रिटायर्ड, इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पराग अनंत देशमुख अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, उड़ान पायलट, सेवानिवृत्त।
2: एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, फ्लाइंग पायलट, रिटायर्ड।
0: और अब राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर वाइस मार्शल सतीश कुमार माथुर, आप वायुसेना में उड़ान पायलट थे, रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
1: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, BSM, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटायर्ड, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। और सैल्यूट करते हुए
1: ब्रिगेडियर पवन धुल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: ब्रिगेडियर पवन धुल, BSM, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
0: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से। अब बारी सैल्यूट की।
1: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित।
2: सुबेदार एच होकाको सेमा, 9 असम, रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स।
0: सुबेदार होकाको सेमा, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के। राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज

0: सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से।
1: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, PVSM AVSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
2: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है। आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर मार्शल मनीष खन्ना, AVSM, VM फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, AVSM, SM, द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ। अति विशिष्ट सेवा मेडल, पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, AVSM, VSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, AVSM, YSM, फ्रॉम द सम रेजिमेंट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: द सम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है। और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM एंड YSM फ्रॉम गढ़वाल राइफल्स, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ AVSM, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती, AVSM, VSM।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें, उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव बोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
1: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की। आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए

0: करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक वायुसेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: वायुसेना के ही एक और अधिकारी अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल। एयर कमोडोर प्रभात मलिक।
1: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर उड़ान पायलट।
2: ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर फ्लाइंग पायलट टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: और अब बारी वायुसेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: अब परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अति विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
0: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह एवीएसएम वाईएसएम वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
3: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल।
2: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग इज वाइस एडमिरल संजय बात्सायन एवीएसएम एनएम।
0: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय बात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
3: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल।
2: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित एवीएसएम वीएम वीएसएम फ्लाइंग पायलट इज द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल।
2: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजिंदर सिंह आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
3: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
3: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक

0: गौतम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूड फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है, परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली, UYSM, AVSM, SM, VSM from the infantry to receive the Param Vishisht Seva Medal.
2: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Rashim Bali, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Manish Mohan Eri, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal.
1: Lieutenant General Manish Mohan Eri, YSM, AVSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही, UYSM, AVSM, YSM, SM from the infantry receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Infantry के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: The next recipient of the Param Vishisht Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the infantry.
2: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha ati vishisht seva medal prapt kar chuke hain, prapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal.
1: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal from the Army Air Defense receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Army Air Defense ke adhikari Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha aprapt karte hue Param Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal to receive the Param Vishisht Seva Medal.
2: Armored Corps ke adhikari hain aap, Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain aur aaj prapt kar rahe hain Param Vishisht Seva Medal Rashtrapati ji ke kar kamlon se.
0: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Surgeon Vice Admiral

0: आरती सरिन अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: अबारी नारी शक्ति की वाइस एडमिरल आरती सरीन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और आज गौरव से प्राप्त कर रही हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल अतुल आनंद अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल to receive the param vishisht seva medal।
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में, एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल सूरज सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, उड़ान पायलट सेवानिवृत्त।
0: The next recipient of Param Vishisht Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired।
1: भारतीय वायुसेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिटायर्ड।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिटायर्ड।
1: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
0: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
0: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट
0: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल
2: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल
2: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल
2: द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा पीवीएसएम एवीएसएम सीएम फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड
0: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
3: मेडल एयर मार्शल नगेश कपूर परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल
2: Air Marshal Nagesh Kapoor, PVSM, AVSM, VM, Flying Pilot, receiving the Sarvottam Yudh Seva Medal.
0: Sarvottam Yudh Seva Medal प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायु सेना के अधिकारी Air Marshal Nagesh Kapoor की परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल आप Flying Pilot हैं भारतीय वायु सेना की
3: Lieutenant General Rajiv Ghai उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल बार टू सेना मेडल एंड बार
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई यूआईएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी
0: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल
3: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल वायु सेना मेडल
2: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेना मेडल वायु सेना मेडल फ्रॉम फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल
0: भारतीय वायु सेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
3: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल सेवा निवृत्त
2: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा

0: Vice Admiral Sanjay Jajit Singh, PVSM, AVSM, and I'm retired.
1: Vice Admiral Sanjay Jajit Singh, अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
2: एयर मार्शल दी थी. नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल सेवानिवृत्त.
0: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
1: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त.
0: The next recipient of Sarvottam Yudh Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, retired.
1: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को. और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए.
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए.
1: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी.

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण यह था जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती हैं। उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.
2: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र लालस और लिपिका दास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: हुणे तुसीं राष्ट्रपति भवन नवीं दिल्ली विखे आयोजित होए रक्षा अलंकरण समारोह दा अखीं वेख्या हाल साडे दिल्ली केंद्र तों सुण रहे सी। एफ बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। इस वेले रेनबो दी कड़ी दे मुताबक 6:13 हो चुके ने। हुण तों कुछ ही पलां च पेश करांगे प्रोग्राम लव यू जिंदगी।

समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम, सुनते रहिए 102.7 FM Rainbow।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड प्यारी जी, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे 7:03 हो चुके ने, FM रेनबो ते शुरू हो चुका है प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। वैसे मेरे तो पहला जिन्ना बिपन ने जोर लगा के मेरी तारीफ या कीती, ऐसा लग रहा है जिवें बस मेरे हथों 500 दा नोट फड़ के ते जो दे मुंह च आया वह बोली गया। खैर मजाक ते लो जी, शाम दे 7:41 हो चुके ने एंड FM रेनबो यानी कि 101.7 FM रेनबो ते फिल्मी दुनिया लैके हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल। लो जी, अज दे इस सफर दे विच, अज दी इस फिल्मी दुनिया दे विच बहुत सारे सितारियां नूं अज असीं याद करांगे। सब तो पहला क्योंकि समा अज घट होएगा, क्योंकि बहुत अज दे खास सितारे ने जिन्हां बारे गल करनी बहुत जरूरी है। चलो जी, तुसी प्रोग्राम दे विच सब तो पहला जिदा आपां जिक्र करन जा रहे हां वो अज मेहमानी शख्सियत है जीवन कला। जी हाँ, जीवन कला फिल्मी दुनिया विच उस समय कदम रखे उन्होंने जो हैलन, अरुणा ईरानी अते बिंदु वर्गियां कलाकारां दा दौर सी। जीवन कला नू अक्सर नाच, क्लब डांस अते सहायक भूमिकावां लई चुने जांदा सीगा, यानी कि कह सकदे हां कि हमेशा उन्होंने एज ए गेस्ट परफॉर्मेंस, एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर एक जिहड़ा हुंदा ना फिल्म दा एक ऐसा गीत जिहदे विच कोई सैलिब्रिटी आके डांस करदे ने, सो इस तरह दी स्पैशल अपीयरेंस हमेशा उन्हां दी फिल्मां विच रही है। सो उन्होंने 100 तो वध फिल्मां दे विच काम कीता अते अपने अंदाज नाल दर्शकां दा मन मोह लिया। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੌਨ, ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਸੀਤਾ ਔਰ ਗੀਤਾ ਔਰ ਯਾਦੋਂ ਕੀ ਬਰਾਤ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੂਵੀ ਡੌਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ। ਭੰਗ ਕਾ ਰੰਗ ਜਮਾ, ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

0: क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ?
1: पापू, तुम आ गए पापू? बापू?
0: मुन्नी, देख मैं तेरे लिए गुड़िया लाया।
1: गुड़िया? बापू, करीमन आपा बड़ी अच्छी बातें सुनाती हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए।
0: ईमान? ईमान क्या होता है आपा?

जी हाँ, असी गल कर रहे हैं एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्टी पर्सनैलिटी वाले अपने अज दे खास परसन उपासना सिंह जी दी। सो 1977 दे विच जिहड़ी फिल्म आती है जिसका मैं गाना प्ले किया जुदाई, तो उन्होंने करियर का ना एक टर्निंग पॉइंट सीगा, क्योंकि इस फिल्म तो बाद, क्योंकि इस फिल्म दे विच ना लोगों ने उन्होंने कॉमेडी जिहड़ी है बड़ी ज़्यादा पसंद की, तो एक्टिंग पसंद की, फिर दर्शकों नू जदों इन्नी ज़्यादा चीज़ पसंद आई तो बहुत सारे डायरेक्टर्स ने अलग अलग फिल्मों के इन्हों का चाहे छोटा जहा कैमियो होवे, छोटे जे इन्हों जोक्स हो जरूर रखने शुरू कर दिते। पर इन्हों उस तो भी ज़्यादा होर प्यार मिले जदों ए टीवी पर भी आ गए। जी हाँ, टीवी पर भी बहुत सारे नाटकों के चाहे थोड़ा जहा थोड़ा थोड़ा एक द शायद इन्हों ने विलन का रोल भी कितने कितने किया एंड बट फिर भी एक कॉमेडी का रोल जोड़ा है लोग ज़्यादा

जी हाँ दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात दे 8:03 हो चुके ने एंड FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी, जिसका नाम है जी मसाला मिक्स। सो ऐसियां मिक्स मिक्स दियां गल्लां मैं थोड़े नाल लैके थोड़े कोल लैके आया वहाँ, जो कि तुसी इंजॉय करोगे। एंड बहुत सारी चीज़ा, चाहे वह बॉलीवुड गॉसिप है, चाहे वह डायलॉग्स ने, बहुत सारी चीज़ा मैं लैके आया वहाँ। पर मैं ना जस्ट दो तीन जिहड़ियां फोन कॉल्स ने वह लवागा, विच फोन कॉल्स लवागा। बट वो फोन कॉल सिर्फ सिर्फ मैनू थोड़ा तुसी याद दसन की कोशिश करनी है कि बड़ा चंगा भला आप ना सैटरडे संडे इंजॉय कर रहे होंगे तो मंडे क्यों आ जाता है, मंडे जड़ा है वो मंडे मन की गल क्यों नहीं करता, यानी कि मन दिया सारिया वो गल्ला जिहड़ियां असीं चाहुंदे कि सिर्फ इंजॉय करिए, हफ्ते में चार शनिवार होने चाहिए, सारे प्रोजेक्ट सारिया मंगा नूं पिछे छड़दा होया सोमवार बिल्कुल टाइम पर आ जाता है। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ।

0: जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका, आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम मसाला मिक्स में। जो अगली बात है ये फनी फनी तो नहीं है, पर ये थोड़ी सी सैड सैड सी है। सो अगर बातें मिक्स हो रही हैं तो क्या ये बात चलेगी?
1: जी हाँ, ऐसा है कि जैसे कि आजकल कॉमेडी क्लब जो हैं दुनिया में, भारत में, पंजाब में, जलंधर में, हर जगह काफ़ी भर चुके हैं और लोग कॉमेडी क्लब में जाकर हंसना पसंद कर रहे हैं। आप बोलोगे हाँ, अगर थिएटर में जाके एंटरटेनमेंट होते हैं तो हाँ, वहाँ मतलब किसी और में जाकर वो गाना सुन सकते हैं या फिर कोई डांस वगैरह देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, तो कॉमेडी भी तो देख ही सकते हैं। नहीं, पर गल कॉमेडी दी नहीं है। जी हाँ, देश दे विच, मैं इंडिया दी गल कर रहा, कुछ ऐसे शहर ने जिथे एक नवा कल्चर जिहड़ा है लोग पसंद कर रहे ने, जिथे लोग आके हस नहीं रहे, लोग आके रो रहे ने। जी हाँ, गल इदां है कि असल जिंदगी दे विच असीं इन्ने ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, अपने इमोशन्स

हेलो जी, वंस अगेन वेलकम जी प्रोग्राम दिल चाहता है। प्रोग्राम दिल चाहता है में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोहित रुबल। और इस प्रोग्राम को आप सुनेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के साथ, एफएम रेनबो के साथ, जलंधर के साथ। मैं कह जी की हाल चाल ने, ठीक ठाक जो की पा करन डे ही गए। रात दे 9:03 हो चुके ने, प्रोग्राम दिल चाहता है। जिन्होंने पहली बार है ना, पहली बार कहीं गड्डी जा रहे होने की रेडियो ट्यूनिंग किया होएगा, कहते होने की बड़ी सोहनी आवाज आ रही है। मैं दस दवा इस प्रोग्राम से तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम अपने परिवार ने घूम रहे हो, दोस्तों ने घूम रहे हो, जिदा भी घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो। ओके, स्पीड ध्यान। सो तुम की करना है, तुम सू मैसेज भेज सकते हो। मैसेज तुम सू सॉरी व्हाट्सअप नंबर 9855 10 10 23 भेज सकते हो। तो किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मी गीत की फरमाइश तुसी कर सकते हो, मैं थोड़ी फरमाइश जरूर पूरी करांगा। हुक्म मेरे आका। सो बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने मैसेज भेज चुके ने, आओ इन्हां दे मैसेजेस नूं वारो वार पढ़दे हां एंड इन्हां दी फरमाइश जिहड़ी है पूरी करदे हां। बई किहे ने सानू 7:15 मैसेज भेजता, अरे 9 बजे शुरू होता है मैसेज, हैं मैसेज मेरा प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता है। ये मैसेज हमें किसी ने 7:15 भी भेज दिया है, लिखा है दिल चाहता है, दिल चाहता है। और ये दिल चाहता है मनजीत का, एकमजीत का खडूर तो, खडूर साहब तो। ठीक है जी, बहुत बहुत चंगी गल है जी, ताडा दिल चाहता है। तो अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे है जी, होली चौंक उत्तम नगर दिल्ली से, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म चोरी चोरी गीत अजय सनम मधुर चांदनी में, आजा सनम मधुर चांदनी में। अच्छा ये तो नहीं गीत, अगर ये है तो हम ज़रूर प्ले करेंगे, हम ये गाना ज़रूर ज़रूर ज़रूर ज़रूर। बोलते बोलते गाना मिल गया। ओके सो नहीं मिला, अरे बाबू कौन सा गाना, आजा सनम मिल गया। ओके ये फरमाइश हमें भेजी है, ये बोल दिया है दीपांशु खोरवाल। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे हमें फरमाइश आई है, लिखा है नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन, रेनबो जलंधर की मोहब्बतों को सलाम, जिससे श्रोताओं में खुशी की लहर है। और ये फरमाइश भेजी हमें सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ये चाहते हैं फिल्म अमानत का गीत तेरी जवानी तब तक महीना, और इसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। अरे वाह वाह वाह। अगला मैसेज है, किसी बात पे मैं किसी से खफा हूँ, मैं हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ओके जी अगला मैसेज, सत श्री अकाल जी मोहित वीर जी, मैं कहना सत श्री अकाल जी, स्वरण सिंह पिंड दोलेवाला जिला मोगा तो, गीत बहुत खूबसूरत हो, फिल्म खूबसूरत। अरे वाह वाह। अगे मैसेज आया साढ़े को, सब प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, गीत तोता मीना की कहानी। और ये फरमाइश भेजिए नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डाल का मिड्डा से। और अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त साहिल महेने, और ये कहते हैं कि हम ना अपने परिवार के साथ ना घूम फिर रहे हैं, आप हमारा नाम भी ले लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, सारा महे परिवार आपको भी शुभ रात्रि अभी कह दें, नहीं नहीं अभी तो चलो रात पड़ी है, हाँ मतलब शुभ इवनिंग जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल ये गाना सुनते हैं और इस गाने के बाद और दोस्तों के मैसेज जो हैं वो लेते हैं।

क्या बात है, खूबसूरत गीत आपने इंजॉय किया और मुझे भी इंजॉय कराया। थैंक यू सो मच आप सभी का। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे मैसेज आया है, प्रोग्राम दिल जाता है को प्यार भरी नमस्कार। मूवी लैला मजनू गीत तेरे दर पे आया हूँ गांव नथाना से और पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता एनी सॉन्ग में शामिल कर दीजिए। ओके ओके। अगला मैसेज है, राम राम जी। कोई भी गीत लालाबद वैसे सुरेश गंगनेजा पूनम गंगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ओके जी। अगला मैसेज, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा और मूवी प्यासा सावन ट्रैक मेघारे मेघारे। ओके। अगला मैसेज, नमस्कार। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर गीत रोते हुए आते हैं सब कमल बलूजा मधु बलूजा सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक माही वे। अगला मैसेज, नमस्कार। वेडिंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती रोड़ा। कोई भी गीत सुना दो जी, कोई भी गीत ला दो। अगला मैसेज हमें आया है, दिल चाहता है सब प्रेम नमस्कार आप कैसे हैं मैं अच्छा हूँ मूवी गोरा और काला सॉन्ग धीरे धीरे भूल को ही सुनना ले। ओके। और ये फरमाइश भेजी है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मण देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी माई रेडियो माई लाइफ। ओके जी। अगला मैसेज है, आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। आदरणीय प्रसारक जी आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत में शामिल करें आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर रही मेहराज हाँ आजाद नगर लक्षर हरिद्वार से। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज है, कार्यक्रम दिल चाहता है प्यार भर नमस्कार जी। दिल है जल है तो जीवन है फिल्म सन्यासी गीत दिल में दर्द रहता मुझे भूख नहीं लगती। अरे इलाज करवाइए बाबू, क्या बात कर रहे हैं तुम। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गावे मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी। अगर गीत नहीं चल सकता किसी भी गीत में हमारे नाम को शामिल कर लें। अरे हमने कर लिया, आपने कहा हमने कर लिया। अगला मैसेज, सप्रे नमस्कार। फिल्म दिल और बोल है मुझे नींद ना आए मुझे चैन ना आए। ठीक है जी। और ये हमें फरमाइश भेजी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्र मणि वर्मा नोखेलाल वर्मा। ओके जी। सो आगे ना हमें एक और फरमाइश आई है, ये फरमाइश है पूरे के पूरे परिवार की। ठीक है। और ये शायद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ओके। और ये लिखा है मैसेज आया है अमृत अमृत है और नीचे लिखा है साली साहिबा। अच्छा जी, अच्छा पूरे परिवार के साथ लिखा है अमृत साली साहिबा और उनकी धर्मपत्नी नीलम जी और उनकी मम्मी जी सीमा जी और उनके पिताजी कविंदर जी और खुद हैं साहिल जी। अरे वाह, पूरा परिवार सुन रहा है, पूरा परिवार कहीं जा रहा है, ठीक है जाइए इंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साहिल जी लिख रहे हैं कि प्लीज़ गाना सुना दें मूवी कॉकटेल का तेरा नाम जपदी फिरा। ये तो आपको आपकी बीवी को गाना चाहिए है ना। So thank you so much for listening program and sending your formice. Thank you so much. It means a lot.

है क्या गाना ढूंढो, ये मिल गया। अरे बहुत खूबसूरत गाना है, पहले ये गाना ही एंजॉय करते हैं। इस गाने के बाद मिलेंगे आपको फिर से दोस्तों, प्रोग्राम दिल चाहता है मैं आपका इंतज़ार करूंगा। आप हमें मैसेज भेजिए 9855101027।

लो जी, इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम दिल चाहता है। और अगर आपका भी दिल चाहता है एक अच्छा सा खूबसूरत सा गीत सुनने का, तो आप हमें लिखकर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9855101027। एंड यस, आई एम अ जीनी, या आई एम अ जीनी एंड आई विल डेफिनेटली यू नो फुलफिल योर विश। सो लेट्स सी किसने अभी और मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है, लिखा है दिल चाहता है पिंड मूलियां वाली जिला फाजिल का प्यार परी नमस्कार, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी काठपाल, दीक्षा काठपाल, जनरल काठपाल, कोई भी पंजाबी की। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज आया, दिल चाहता है फिल्म भीगे पल भीगी पलकें, जन्म जन्म का साथ, प्यार भरे नमस्कार, हनुमानगढ़ टाउन, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। और लिखा है शुक्रिया जी, आपको भी हमारा शुक्रिया जी, हमारी तरह हम शुक्रिया रखते नहीं, सभी को शुक्रिया बांट देते हम। अगला मैसेज आया जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन टिकेस्ट्रो, रोजी टिकेस्ट्रो, पल टिकेस्ट्रो, विली टिकेस्ट्रो, क्या मौसम आया है, कितने आक्रमण, लता जी किशोर 1975 किशोर। ओके जी, थैंक यू जी। और अगला मैसेज हमें आया है, लिखा है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका।

कुरवाल फिल्म ही रांझा बोल मिलना तुमसे हम घबराएं। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है, लिखा है नमस्ते फ्रॉम सुमन हीर कामया तनम हरविंदर युवराज यशिका पंजाब दसूहा डिस्ट्रिक्ट शाहपुर सॉन्ग लेके पहला पहला प्यार। फिल्म आह बोल जाने ना नजर पहचान जिगर। यार ये गाना लगा ही देते हैं, लेके पहला पहला प्यार। बहुत सदियों के बाद ये गाना हमारे कानों तक पहुंचा है। आई विश मुझे ये मिल जाए, मतलब ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेके पहला पहला प्यार और हमें नहीं मिला, ये वाओ। ओके एक और ट्राई करते हैं। ओके नहीं मिला, चलिए ठीक है अगला गाना ढूंढते हैं। अगली फिल्म है आह जाने ना नजर पहचाने जिगर, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका खोरवाल भानु प्रकाश। अगला मैसेज पराया धन, आओ झूमे गाएं मिलके धूम मचाएं भोपालगढ़ राजस्थान से। और धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा पूजा परिहार। ठीक है जी, अगला मैसेज खुशनुमा गीत गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली से। और अगला हमें किसी ने मैसेज भेज दिया है कि गाना लगा दो ओ माय माशूका। अरे ये गाना फिल्म अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई है, गाना तो हमारे पास नहीं मिलेगा रे। सो अगला मैसेज आया पिंड हीरा वाली जिला फाजिलका दे पक्के स्रोता सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदू पार्वती हिमांशु गुदारा। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम दिल चतल लाइव सुन रहे हैं, रात नू सारे काम निपटा के इस प्रोग्राम नाल जुड़ जाने हैं। सो कोई भी गीत सुना दो। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं कहना गीत कुछ अच्छा सा चला ही देते हैं। ओके फिल्म कौन सी लिखी, फिल्म इज्जत। ये भाई साहब रोज ही इस गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं पूरी करेंगे। पर भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रनाजल राय। ओके ओके ओके ओके, बहुत सारे दोस्त बहुत दूर दूर से मैसेज भेजते हैं हमें। अगला मैसेज आया कोई भी गीत सुनाए, मोताला महाराष्ट्र से विजय सरालकर, रतन माला, ओम कुमार और आरती सुलकर। अगर कोई भी गीत है तो मैं अपनी मर्जी का लगा लेता हूँ, और मैं सुनना चाहता हूँ रॉक स्टार मूवी का कुन फाया कुन। ठीक है जी, ये रहा गीत।

तो अक्सर नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम अदाब किसी भी गीत में शामिल करें। और हमें एक फरमाइश आई है इन दोस्तों की, जिनका नाम है निहारिका कोड़ा, जानवी, जोबन प्रीत और रोहन शाही और गुरविंदर जी और गुरसिमरन जी और इनके साथ राजेश जी हैं, और सभी एक ही फरमाइश करना चाहते हैं, एक ही गाना सुनना चाहते हैं। ये सुनना चाहते हैं फिल्म अनाड़ी मूवी का किसी की मुस्कुराहटों।

क्या बात है। एक बार फिर खूबसूरत गीतों बाद फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। समा हो चुका रात दे 9:41:45 हो चुके ने। प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित दे नाल, ते अगे वधदे हां। अगे आपां को बहुत सारे मैसेज आ गए ने, लगदा आपां नूं हुण मैसेज जल्दी जल्दी लैणे पैणे ने। अगला आपां को मैसेज है पिंड जट्टां वाली जग्गा हंस, कोई भी गीत लिख रहे ने, थैंक यू जी। अगले बसी गांव घमंडिया सूरतगढ़ जगदीश ढुकिया परमीला ज्योति सरिता सचिन अमना अमन्ना अमना तमन्ना साइना विष्णु ढुकिया देहती ईवा धरनिया फिल्म सोतन की बेटी आवाज़ लता मंगेशकर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया है जी, लिखा है पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़ू सफेदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत कौर लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करने वाले आरजे नूं प्यार भरा सत श्री अकाल ते सत्कार किसी भी गीत शामिल करो जी, धन्यवाद, ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगला मैसेज आया जी फिल्म मनमोजी सिंह जरूरत है जरूरत है श्रीमती की कलावती की संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल सानी पिंगा वाला चौंक गुराया जलंधर तो, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज आया दिल चाहता है कार्यक्रम टेस्ट करने का जो पेश करने का जो अंदाज है आपका वो बहुत लाजवाब है, शुक्रिया शुक्रिया। पंजाबी हिंदी रोमांटिक विचार यानी रोमांटिक बातें सुनकर बहुत आनंद आता है इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ।

साथ भोजन भी जब करते हैं यानी खाना खाते हैं तो खाना भी टेस्टी लगता है। सर यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है जब आप मैसेज पढ़ते हैं और आपके जो अंदाज है लवा जो आप अरे मजा ही आ जाता है। ऐसे प्रोग्राम सिर्फ एफएम रेडियो चंद्र पर सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच, इट्स मीन्स अलॉट। राजकुमार रिवार्ड चंद्रकला रिवार्ड सादुल शहर राजस्थान से, थैंक यू सो मच। आगे पहुंचते हैं, आगे हमें मैसेज आया है करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से। नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर कौर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन एंड अभिजोत, किसी भी गीत में शामिल किया जाए। थैंक यू। अगला मैसेज आया है हमें, दिल चाहता है गाँव फ्रांसी जिला हिसार से, राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, ठीक है जी। अगला मैसेज आया आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भाई नमस्कार, फिल्म हमराज, स्वर महेंद्र कपूर, बोल नींद गगन के तले, नरेश्वर नगर नवरेल महाराष्ट्र से, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहरकर, धन्यवाद। मैसेज आया, सत श्रीकाल सारे पंजाबियों, जरा सा झूम लूँ मैं, गीत सुना दियो जी, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे क्या बात है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जरा सा झूम लूँ मैं, अरे ना है ना। तो ये गाना अभी प्ले करेंगे हम और ये फरमाइश में भेजी है काला कंबोज, रजनी बाला कंबोज, सीरत कंबोज, जपजी कंबोज से, गुरफतेह सिंह कंबोज, पिंड मोड़ के हिथाड़ जिला फिरोजपुर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और हमें किसी का मैसेज आया है, फरहान शेख हमें मैसेज भेज रहे हैं, हाय आई एम फ्रॉम हरियाणा। अरे वाह वाह जी, थैंक यू जी, इतने दूर से लोग हमें सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हमें। और आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया है हमें सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुनील काका, बिट्टू लाडी, मास्टर मोहन, जगनगर चंद्र। तो फिलहाल बहुत मैसेज पढ़ ले, मैं अगले 15 मिनट से शायद बाकी तो पूरी नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल चलो गाना इन्जॉय करते हैं, गाने तो बाद वापस आने हैं।

तो जी फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है में। ऐसा है कि समर आ गया है सिर्फ 5.5 मिनट। बाबूजी बहुत मैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो आ जाइए हमारे साथ, इस किश्ती में सवार हो जाइए, प्यार की किश्ती में। अगला मैसेज सशिकाल सॉन्ग सुन साहिब सुन रहे हैं जी। अगला मैसेज पिंड झंझेड़ी जिला तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वालों सारे काश्मीरी परिवार को प्यार भरी सत श्रीकाल। तो ठीक है जी, अगला मैसेज थैंक्स ओके। अगला मैसेज गाने के बोल, ये हमें मैसेज भेजा है और सुनम मधुर चांदनी में हम फिल्म चोर चोरी आवाज़ मन्ना डे और लता मंगेशकर मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से। ठीक है जी, थैंक यू। अगला मैसेज गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत संगीता कुंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत, थैंक यू जी। अगला मैसेज बहुत लंबे मैसेज है दोस्तों। अगला मैसेज आज की पंछी और ये मैसेज भेजा है कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निपी शाहीन ओके। अगला मैसेज आया है सूरज रेडियो श्रोता संघ सहसपुर लोहरा दनिया खर्द कहाँ दूर से मैसेज भेजा है गुनीराम राजपूत संतोषी ओके थैंक यू जी। अगला मैसेज मोहब्बत जिंदाबाद बहुत लंबा मैसेज मैं आज लास्ट दो मैसेज रह गए ये। अगला मैसेज कबीर रेडियो श्रोता संघ ढोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तुमरिया अजय देव तुमरिया तुषार देव डोली बेबी पूजा तुमरिया थैंक यू जी। अगला मैसेज आया है हमें जी कविता चोपड़ा पप्पू चोपड़ा सिल्वर कुंज लुधियाना से और ये सेकंड लास्ट मैसेज आया है गांव हिपर सोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उमान शेख फौजी सायरा बानू और ये अगला मैसेज आया है जलंधर से और ये मैसेज हमें भेज रहे हैं पूरा का पूरा परिवार लगता है यहाँ पे प्रोग्राम को सुन रहा है। बड़े भाई साहब सुरेंद्र जी हैं उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अनु जी और उनके छोटे भाई साहब नरेश जी उनकी धर्मपत्नी निशा जी और साथ में कितने सारे नन्हे मुन्ने शुरुआत होती है गरिमा जी से उसके बाद गरीशा जी उसके बाद लविशा जी उसके बाद नैनुपा ये कौन सा नाम हुआ नैनुपा ओके नैनुपा और उसके बाद में भाव्या ठीक है जी। और ये सुनना चाहते हैं तारे जमीन का बम बम बोले। ठीक है जी, प्रोग्राम का आखिरी गीत और आप एंजॉय करेंगे बम बम बोले मेरे साथ इस प्रोग्राम में। थैंक यू।

समुंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है। समुंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, हमारे शहर की आंखों ने मंजर और देखा था, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती है। हम अहले शहर की ख्वाहिश की मिलजुल कर रहे, लेकिन हम अहले शहर की ख्वाहिश की मिलजुल कर रहे, लेकिन अमीरे शहर की दिलचस्पियां कुछ और कहती है। एक खूबसूरत जो गज़ल है ये है खुशबीर सिंह शाहजी की, और अब सुनेंगे हम प्रोग्राम शामी गज़ल में अगली गज़ल मनहर उदासी की।

आ जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आखिरी दिन आओ जब मेरी सांसें जाना सीख रही हो, लेकिन खाली हाथ मत आना, अपने साथ गुलाब लाना और मुझे एक बार गले लगाना और इसे खामोश ही रहने देना। दुनिया को यही लगने देना कि हमारे बीच कुछ भी था ही नहीं, बस मजबूत बने रहना जब मैं तुम्हें आखिरी बार देखूं। मैं चाहता हूं कि मेरी रूह तुम्हारा चेहरा याद रखे, शायद किसी दूसरी दुनिया में हम फिर मिलें, बस याद रहे।